इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का भाग 65।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का 65वां भाग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समा

0: सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदश शततमे वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्योत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयं गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमण्डलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35.1 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेष्वपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि, अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकैः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपान्त्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8 पराजितम् इति वार्ताः।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा

0: कर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DEAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
5: जब से रेल कनेक्ट हो गई है

0: तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 24 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर

0: भारतीय पायलट स्मिथ मचार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ये प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्तिताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूपीएससी का सद साला यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उनवान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुकाम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुकाम और दीगर शामिल हैं। ये तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली 2 रोजा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब किया जिसके बाद मुख्तलिफ मौजूआत पर पैनल मुबाहसे हुए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रूपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 413 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रूपये फी क्विंटल, जौ की कीमत में 136 रूपये फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रूपये फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के नफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें टैक्स भी शामिल है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। कानों के महकमे की वजारत आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लाकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। वजारत ने कहा है कि ये साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरुएकार लाने और इन वसाइल की तवील मुद्दती यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की समत ये एक अहम कदम है। ये नीलामी अंडमान के बहरी खित्ते में साहिल समंदर 2 मादनियाती ब्लाकों पर मुश्तमिल है जो मखलूत लाइसेंस देने के लिए होगी। वजारत ने इस बात को उजागर किया है कि उम्मीद है कि इससे मुनज्जम तलाश की हौसला अफजाई, सरमायाकारी को रागिब करने और साहिली इलाकों में मादनियात की तलाश और उनके फरोग के लिए जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी इख्तियार किए जाने को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले पर मुश्तमिल एक बेंच ने यह इंदिया दिया है कि वो दिवाली के दौरान बाज पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत देगी लेकिन इसके लिए मखसूस वक्त की हद नाफिज की जाएगी। इस तरह अदालत आलिया ने मुकम्मल पाबंदी और बे रोक टोक पटाखे छोड़ने दोनों के इम्कान को रद्द कर दिया है। अदालत ने मजहबी जज्बात और फजाई आलूदगी के नुकसानदेह असरात के दरमियान तवाजुन कायम रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अदालत आलिया ने कहा कि मुकम्मल पाबंदी आयद करने से दिवाली मनाने वाले लोगों के

0: इस बात को ठेस पहुंच सकती है, जबकि पूरे दिन पटाखे छोड़ने से माहौलियात और बच्चों, बुजुर्ग अफराद और बीमार लोगों समेत हसास तबीयत के अफराद पर नामुवाफिक असर पड़ेगा। अदालत आलिया शदीद फजाई आलूदगी के दिनों में दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते और दीगर शिमाली रियासतों में पटाखों पर बंदिश से मुतालिक तवील अरसे से जेर इल्तवा मामले की समाअत कर रही थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सऊदी अरब के हुक्काम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उस को पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की। ओमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। दो मिनट में ही तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। ताहम मुसाफिरों और अमले के अरकान ने कॉकपिट में घुसकर हमलावर पर काबू पा लिया और जहाज के इस्तेहकाम में मदद की। इसके बाद परवाज के रास्ते में तब्दीली करके इसे सऊदी अरब के शिमाल मगरिब में वाकई तबूक इलाकाई हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतारा गया। इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल काज ने इसे सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन वाकया और एक मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इसराइल के वजीर आजम ने कैप्टन स्मिथ मचार, जो एक भारतीय शहरी हैं, को सच्चा हीरो करार दिया जिन्होंने इसराइल जाने वाली परवाज में सवार 174 लोगों की जान बचाई। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मचार ने गैर मामूली दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए एक बड़े सानहे को रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ मचार की सताइश की और उन्हें एक बहादुर हीरो करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मचार ने दूसरों की जान बचाने की खातिर दिलेरी, हिम्मत और पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि कैप्टन मचार की बहादुरी की बदौलत सैकड़ों अफराद की जान बचाने और एक बड़ा सानहा टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मचार एक हीरो हैं और भारत को उन पर फख्र है। जनाब मोदी ने उनकी जल्द सेहत याबी, नई कुव्वत और तंदुरुस्ती की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जदीद तर्ज के बुनियादी ढांचे और ज्यादा मजबूत कनेक्टिविटी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत सरकार के नजरिए को किस तरह जम्मू कश्मीर में काबिल कदर चनाब और अंजी खड रेल पुलों के जरिए अमली शक्ल दी जा रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 26 जून को चिनाब और अंजीखट पुलों का इफ्तिताह करने के बाद कहा था कि ये रेलवे पुल भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत की अलामत और जम्मू और कश्मीर में रابطे को मजबूत करने में एक संगे मेल की हैसियत रखते हैं। ये दोनों पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में तामीर किए गए हैं। चिनाब रेल ब्रिज दरियाए चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और ये दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़े रेलवे का मेहराब पुल है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल रेलवे पुल है जो कि 96 केबल्स पर कायम है। इन पुलों से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक रेल रابطہ मजबूत हुआ है बल्कि लोगों और अशिया की नकल व हमल में भी बेहतरी आई है। नीज सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है। इन पुलों से कश्मीर से जरी, बागबानी और

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में बांसुरी वादन। कलाकार थे सौरभ बनौदा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: आज हम सब जानते हैं कि भारत तेजी से एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था है जो नई तकनीकों और युवा प्रतिभा के दौर से गुजर रहा है। विश्व भर में भारत की इस प्रतिभा की मान्यता है, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के इस युग में उद्योगों में भी परिवर्तन आ रहा है और शिक्षा और कौशल विकास जो है उस बदलती हुई जरूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसे समय में उद्योग, शिक्षा और युवाओं के बीच उनके भविष्य को लेकर के तालमेल बिठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब पूर्ण विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री पवन जिंदल। श्री पवन जिंदल जी ने उद्योग से लेकर के शिक्षा और युवा विकास तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को करीब से देखा है और इनकी बातों का स्पष्टता ये होती है कि भविष्य केवल तकनीक का नहीं है बल्कि तकनीक के साथ कौशल, शिक्षा, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन भी है। आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि जो उद्योग है, शिक्षा है, कौशल है, तकनीक, युवा, सामाजिक जिम्मेवारी और उसका भविष्य है, इसमें लेकर के देखें तो वर्तमान में भारतीय उद्योग के समक्ष अवसर क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं?
3: भारत को 80 वर्ष होने जा रहे हैं आजादी के लिए। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित थी। भारत एक दुनिया का बड़ी जनसंख्या वाला देश है। आज के इस समय में हर व्यक्ति की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए

0: ये उसको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए आज उद्योग का उतना ही बड़ा महत्व हो गया। युवाओं को पुराने जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो बंद हो गए, आज नए नए उद्योग देश में लग रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और स्किल चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक बचपन से एक छोटे बिजनेस से निकलकर आज मैं गुरुग्राम, जो भारतवर्ष का आर्थिक दृष्टि से दूसरे नंबर का स्थान है, मैं काम कर रहा हूँ। परंतु मैं बताना चाहता हूँ आज के युवा को, चिंता करने का विषय नहीं, मैं खुद एक छोटे से 100 घरों के गाँव में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ, एक 10 फुट बाई 10 फुट की किराने की दुकान करने वाले बाप का बेटा हूँ, कोई बड़े आर्थिक सोर्स रखने वाला नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ भारत में बनने वाली मारुति कार उसकी पहली सीट वो मेरे द्वारा बनाई गई 86 में।
1: बहुत अच्छा।
0: मैं 86 में 6 महीने तक जापान रहा, मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं आज के युवा को कहता हूँ टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, कुछ भी मुश्किलें हो, परंतु दुनिया का कोई युवा जो कुछ कर सकता है वो भारत का युवा भी कर सकता है। तो इसीलिए आज हमारे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं। आज एक युवा जो प्रशिक्षण करता है उसके मन में एक डर होता है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, या डिग्री है परंतु इतने बड़ी जनसंख्या के देश में और कंपटीशन में मैं कहां खड़ा हूं, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। मैं कहता हूं इसके डर से बाहर निकलिए। आज धीरूभाई अंबानी, अंबानी ग्रुप को पूरे विश्व में बड़े नाम से जाना जाता है, भारत के तो टॉप लोगों में आता है, परंतु धीरूभाई अंबानी को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 10वीं पढ़े हुए थे, पेट्रोल पंप पे नौकरी की, परंतु उसने रिलायंस की स्थापना की, केवल एक 200 गज के ऑफिस में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, परंतु उनके मन में एक दृढ़ निश्चय विचार और प्रामाणिकता से काम करने का एक संकल्प था, उसके आधार पर किया। मैं आज के व्यक्ति को, आज के एंटरप्रेन्योर को जो आज काम करना चाहता है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ 3 बातें किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 कॉस्टिंग, नंबर 3 कमिटमेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ये 3 बातों को पूर्ण करता है, उसके पास भले ही धन है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, परंतु वह 3 बातों को पूर्ण करता है तो उसको किसी बात की जरूरत नहीं। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे देश में, पूरे विश्व में, एक मसाले के क्षेत्र में MDH महाशय धर्मपाल जो पाकिस्तान से आए थे, टांगा चलाने वाले थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने एक गुणवत्ता युक्त मसाला तैयार किया जो आज पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लिया, वो अपना प्रचार स्वयं करते थे, आज पूरे विश्व में उनका स्थान है। हमारे अंदर उस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति, यह होना बहुत बड़ी बात है, उसके अनुसार अपने कार्य को तन्मयता से करना, उसमें से उस प्रकार का प्रोडक्ट निर्माण करना, हमारा प्रोडक्ट बोलेगा जिसके आधार पर हम सर्वाइव करेंगे, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं देखता हूँ हमारे हरियाणा के ही बाबा रामदेव जी एक संत है, उन्होंने कोई इंडस्ट्री की शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु आज भारतवर्ष के बड़े उद्योगपति के नाते उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने भी किसी ब्रांड का सहारा नहीं लिया, वो भी एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं। ये आज में काम करने वाले बड़े ही टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार के स्किल के काम बदल गए, परंतु एक एंटरप्रेन्योर जब हम बनते हैं, उस दिशा में हम सोचते हैं, तो हमारे जीवन में एक देश और समाज का ध्यान रखते काम करने की निडरता, निश्चितता, दृढ़ता, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो हम उन सब बुलंदियों को छू सकेंगे।
1: बहुत अच्छा। और आपने एक बात बताई कि कमिटमेंट की बात, और आज कहा जाता है कि डिग्री पर्याप्त नहीं है, डिग्री से आगे कौशल चाहिए, निपुणता चाहिए, तो कंपनियां जो है युवाओं को आजकल शैक्षणिक आधार पे हायर नहीं कर रही है, नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि उनके व्यावहारिक और मानवीय कौशल को महत्व दे रही है। आपने ऐसे कुछ कुशल लोगों की, सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं। अब बात आती है अध्ययन के समय युवाओं को अवसर देने की या अध्ययन के पश्चात अवसर देने की, तो ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए उद्योगों के बीच और विश्वविद्यालय के बीच एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। आपने इन दोनों को बहुत ही नजदीक से देखा है और इस क्षेत्र में काम भी किया है और कर रहे हैं, तो आपके विचार में विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच ऐसा कौन सा बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक औद्योगिक अनुभव मिले और उस अनुभव का वो अपने अपने स्थानीय स्तर पर भी लाभ उठा सके।
0: देखिए, अभी भारतवर्ष में देश की आजादी के पश्चात एक पुराना

0: एजुकेशन सिस्टम चलता था, परंतु देश के लगभग 60-70 वर्षों के बाद इस देश में विचार शुरू हुआ कि भारत के नागरिक को भारत के एनवायरमेंट के मुताबिक, भारत की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा दी जाए। उसी विचार को लेकर 29 जुलाई 2020 को भारत के मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई शिक्षा नीति उसको मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जब हम देखते हैं, उसमें केवल पढ़ाई नहीं, केवल उसमें आगे बढ़ना नहीं, उसमें चार प्रकार के स्टेप आते हैं। पहली से दूसरी क्लास, 5 से 8 वर्ष का बच्चा केवल कहानियों के द्वारा, खेल के द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस पर बोझ नहीं होगा। दूसरा, 8 से 11 वर्ष तक, 5वीं क्लास तक वो बच्चा अपनी भाषा, कुछ विषयों का, गणित, विज्ञान, इस प्रकार के कुछ विषयों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक जब वो अपनी 8वीं कक्षा तक होगा, तब उसके कुछ विषय और बढ़ जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ उसको स्किल का कोई ना कोई विषय उसमें ऐड हो जाएगा। और उसके आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का विद्यार्थी जो 14 से 18 वर्ष का होगा, उसके लिए एक अलग प्रकार की शिक्षा केवल उसको ऑप्शन है, वो अपने विषयों का चयनित कर सकता है, लचीलापन है, वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, नई शिक्षा नीति के मुताबिक व्यक्ति सब लोगों को बहुत हाईटेक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई के साथ साथ जब वो अपनी केवल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करता है, अगर उसके बाद वो नई पढ़ाई करता, तब भी अपने जीवन में सक्सेसफुल उद्योगपति बन सकता है, वो बढ़ना चाहिए। पढ़ लिख कर सरकार के पास केवल 8% से ज्यादा नौकरी देने का स्कोप नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी जनसंख्या के प्राचीन पद्धति, एक हेरिडेटरी इसकी व्यवस्था थी, उसके लिए एक बात मैं आज के युवा को कहना चाहूंगा, जो आज थोड़ा उसके मन में आता है, जब हम स्किल सिखाते हैं, मैं खासकर उत्तर भारत के साधन संपन्न परिवारों में देखता हूं, जब उनको कहता हूं कि आज अनेक प्रकार के स्किल के काम है, तो बच्चे के पेरेंट्स, बच्चा खुद वो कहता है, हमारा बच्चा क्या प्लम्बर बनेगा, क्या कारपेंटर बनेगा, क्या वेल्डिंग सीखकर लोहार बनेगा। मैं अभी अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक रिलेटिव है, किसी कंपनी में परचेज मैनेजर है, उसकी वहाँ 6 लाख रुपए तनख्वाह है, परंतु मेरे गाँव से एक और बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया था, उसको भी मैं मिला, वो वहाँ एक छोटा मोटा किसी लकड़ी के कारपेंटर के साथ काम करता था, वो लकड़ी का काम थोड़ा बहुत जानता था, उसने स्किल था उसमें, उसने वहां जाकर किया। जब मैं उसके घर गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, परंतु वो 25 से 30 लाख रुपए कमाता है। श्रम के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे जीवन में उत्पन्न होगा, मेरे पास गुण है, उस गुण के आधार पर मैं दुनिया में किसी भी प्रकार से सर्वाइव कर सकता हूँ, ये भाव उसके मन में, हमारे देश के नौजवान के मन में आना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं। मैं उसका एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आज एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर है, और उस विश्वविद्यालय के साफ सफाई रखरखाव के लिए उसमें स्वीपर है। अब स्वीपर के काम को कई बार हम कहते हैं छोटा काम है, मैं कहता हूँ इस विश्वविद्यालय में अगर 15 दिन की छुट्टी के लिए इसके वाइस चांसलर चले जाएंगे तो विश्वविद्यालय अच्छा चलता रहेगा, तो भी, परंतु 15 दिन स्वीपर जिनको हम छोटा काम कहते हैं वो चले जाएंगे, विश्वविद्यालय नहीं चल पाएगा। तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं।
1: स्किल के साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अनुसंधान का क्षेत्र है, सबसे बड़ी तकनीकी है, लेकिन इसके कुछ लाभ और नुकसान है, तो ये तकनीक जो है, आपको अपने अनुभव से क्या लगता है कि रोजगार के अवसर कम करेगी या युवाओं को उसके लिए अलग से अपने स्किल में बदलाव करने की जरूरत है? और विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए जब हम नौकरी से उद्यमिता तक की बात करते हैं या उद्यमिता से नौकरी की बात करते हैं, तो हमारी क्या एक पॉलिसी या युवाओं को किस तरह के सोच में बदलाव की जरूरत है?
0: आपने AI की बात की, नो डाउट मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, परंतु टेक्नोलॉजी एक मशीन है, मशीन का बदलाव इमोशन से नहीं हो सकता, मशीन में इमोशन नहीं हो सकता, आत्मीयता नहीं हो सकती। मशीन तो एक तरीके से काम करेगी, व्यक्ति को सीख के समझ के आया, उसको कुछ पढ़ा दिया, वो वैसे काम करेगा, परंतु समय पर हालत बदल गए और मशीन में बदल नहीं होगा, परंतु अपने विवेक से, अपनी समझ से व्यक्ति बदलेगा। मैं इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। भारत के युवा के मन का दृढ़ संकल्प, हर जब कोई एक काम बंद होता है 10 नए दरवाजे खुलते हैं, खुलेंगे, जिनकी जरूरत समाज में है, तो इसीलिए उसके मन में ये संकल्प ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, प्रामाणिकता से काम करना रहेगा, तो अपने आप उस प्रकार के अवसर उसको समय समय पर प्राप्त रहेंगे। समाज में ऐसी बहुत सारी

0: चीजें चलती हैं जो होती रहेंगी।
1: निश्चित रूप से तकनीकें आएंगी, लेकिन तकनीकों के अनुसार अपने आप को कुशलता प्राप्त करने की जरूरत है। हर कोई उस तकनीक में अपने आप को अगर एक जानकारी रूप में उसको स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से चुनौतियां जो आज दिख रही हैं वो कल अवसर बन जाएगा। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनौतियों को फेस करने की जरूरत है, आपदा में भी अवसर है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे स्थानीय तकनीक हो, स्थानीय उद्योग हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो और हम रोजगार लेने वाले न बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि उद्योगों को, युवाओं को या व्यक्ति विशेष को, चाहे उद्योग से जुड़े हों चाहे अन्य क्षेत्र से जुड़े हों, उनको समाज में किस तरह का सार्थक योगदान देना चाहिए या वो दे सकते हैं?
0: देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में उद्योग में भी ये ठीक है, निश्चित रूप में कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ लाभ मिलना चाहिए। मैं जब छोटा था, आज से 60 वर्ष पूर्व, हमारे पिताजी हमें बोलते थे, भारत के उद्योग की सोच लूट नहीं है, पारिवारिक भाव है। वो बोलते थे, हमारा प्रॉफिट कितना चाहिए? आना रुपया, लाभ है मेरे भैया।
1: अच्छा,
0: 16 आने का 1 रुपया था।
1: हाँ हाँ।
0: एक आना 1 रुपए के पीछे लाभ होना चाहिए। कितने परसेंट हुआ? लगभग 6%। 6% में अपने माल को बेचो। आज हम देखते हैं कई बार मल्टीनेशनल ब्रांड के, हमारे आज का युवा स्वदेशी ना पहनकर उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट जिसके ऊपर एक ब्रांड नाम लगा हुआ है, वो लगते ही 1000 की टी शर्ट 20000 में बेचता है। ये लूट है। भारत का दृष्टिकोण पूरे विश्व को मानव मूल्य के आधार पर एक परिवार के रूप में देखता है, व्यापार के रूप में नहीं देखता। हमारा हाथ दूसरे की जेब में नहीं है। तो हम केवल समाज को और विश्व को शांति और भाईचारे का, आत्मीयता का एक देश देना हमारा देश है।
1: श्री पवन जिंदल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने शिक्षा और उद्योग के बीच में तालमेल, आपने नए जो तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और युवाओं को किस तरह से अपना एप्टीट्यूड और स्किल उनमें बदलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, और खास करके आपने उद्यमिता के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेवारी की दिशा में किस तरह से हमारे देश के लोगों को सक्षम होना चाहिए और समर्पित भी होना चाहिए, इन सब बातों पर उदाहरण सहित विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका,
4: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे उद्योग पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और आइए, अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है पंजाबी कार्यक्रम का, मिट्टी दी महक। तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य

0: स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है। साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंगखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said over the 100-year journey of UPSC, the generations, governments, technology and syllabi have changed, but the trust in this institution remains as unwavering as ever. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive good governance.
3: Hamari civil services se bhi naye badlav ki mang karti hai. इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Prime Minister Modi has said safeguarding forests and wildlife is essential for maintaining nature's balance and securing a valuable legacy for future generations. In his message on the occasion of Wildlife Week 2026, Mr. Modi urged citizens to contribute towards protecting wildlife and their habitats. The Prime Minister highlighted India's achievements in wildlife conservation over the past decade, citing the success of Project Cheetah. He also highlighted India's role in promoting global cooperation for big cat conservation through the International Big Cat Alliance. The nationwide Ek Din Ek Ghanta Ek Saath cleanliness drive is being conducted as part of the Swachhata Hi Seva 2026 campaign. The objective of the campaign is to ensure cleanliness, improve sanitation and create awareness about hygiene and proper waste disposal among the general public. Several union ministers, chief ministers and senior officials are participating in the cleanliness drive across the country. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign, which began on the 17th of last month, will be observed till the 17th of October. The theme of this year's campaign is Swachhata Mein Sehbhag, Swachh Bharat, Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. Saudi

घर आंगन। कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी की पौधी सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट को महसूस करते हैं घर आंगन में, क्योंकि घर में आपसे कोई कहे चाहे ना कहे कि उसे आपसे प्यार है, लेकिन हाँ प्यार तो है, क्योंकि ये सिर्फ कहने का मोहताज नहीं होता, ये महसूस करने का मोहताज होता है।

फिल्म खरौंदा, आवाज हिरणा लला, आप सुन रहे थे ये गाना। अच्छा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में हमारे त्योहारों का जो पूरा मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो बातें बस उसी से जुड़ी हुई थोड़ी आपसे करना चाहूंगी कि त्योहार आते हैं तो घर ना जैसे थोड़ा और घर हो जाता है, मानेंगे ना? और रसोई से आती खुशबू, दरवाजे पर सजावट, नए कपड़ों की तैयारी और सबसे बढ़कर अपनों के साथ बैठने का इंतजार। लेकिन आजकल त्योहार का ना एक हिस्सा हमारी मोबाइल की तस्वीरों में भी बसता है, मानेंगे ना? सजावट हुई तो तस्वीर, खाना बना तो तस्वीर, परिवार साथ बैठा तो तस्वीर। और कई बार तस्वीर लेने के चक्कर में हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं जिसे बाद में याद करना था। फिर जरा सोचिए, बचपन में मनाए गए त्योहारों की कितनी तस्वीरें हमें अभी भी सचमुच याद है? शायद बहुत कम, लेकिन यह जरूर याद है कि दादी के हाथ की मिठाई कैसी लगती थी, माँ सुबह से रसोई में क्या क्या बनाती थी, भाई बहनों के साथ कैसी शरारत होती थी, या त्योहार पर कौन दूर से चलकर हमारे घर आया था। याद रहती ना, बहुत सी ऐसी हमारी बचपन की यादें हमारे साथ ता उम्र चलती रहती हैं। यानी त्योहारों की असली याद शायद कैमरे में कम और एहसास में ज्यादा रहती है। तो देखिए, ये हम जरूर कहेंगे कि तस्वीर जरूर खींचिए, उन्हें सहेजिए भी, मगर कुछ पल कैमरे से दूर रहकर अपने लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी सुनाइए, साथ खाना खाइए, हंसिए। क्योंकि कुछ तस्वीरें दीवार पर लग जाती हैं, कुछ मोबाइल में रह जाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो तस्वीर बिना भी पूरी तरह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर होती हैं तो यादें भी होती हैं। तो आज उसी से जुड़ा सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि आपको अपनी कौन सी ऐसी तस्वीर याद है जिसके साथ आपकी कोई बहुत गहरी याद जुड़ी हुई है, बचपन की हो, जवानी की हो, अभी की हो, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ना आपको वो तस्वीरें आपके जहन में पूरे समय बस जाती हैं, कुछ ऐसी खास तस्वीरें होती हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और आप हमें कहाँ बताएंगे? जी हाँ, fmgoldga@gmail.com पर।

मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म माया का ये गीत। और देखिए, तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल हमने आपसे किया है कि आपके जहन में अभी भी कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके साथ आपकी बहुत बेशकीमती यादें जुड़ी हुई हैं, तो हमें बताइए fmgoldga@gmail.com पर। और आप सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम घर आंगन। देखिए दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर अपने भीतर कई ऐसी स्मृतियां समेटे हुए हैं जो हमें सेवा, सम्मान और साहस के अलग अलग रूपों से परिचित कराती है। आज ही के दिन ना भारतीय सेना की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सैन्य नर्सिंग की परंपरा भारत में 1888 से जुड़ी है, जबकि इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की औपचारिक स्थापना आज ही के दिन यानी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। युद्ध के कठिन समय से लेकर शांति के दिनों तक सैन्य नर्सों ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सेवा की यही भावना हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की ओर भी ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने ना 1 अक्टूबर को यह दिवस उन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके अधिकारों, गरिमा और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया है। उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक यात्रा है ना, और इसीलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं, बल्कि यह भी है कि उन्हें परिवार और समाज में कितना सम्मान और अपनापन देते हैं। इसी तारीख को हम डॉक्टर एनी बेसेंट को भी अपनी जयंती उनकी जयंती पर याद करते हैं। 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर स्मरण आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, जिनकी पुण्यतिथि भी हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं, मतलब आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। 1930 के पेशावर कांड में उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उनका यह निर्णय साहस और अंतरात्मा की आवाज का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया था। 1 अक्टूबर 1989 को उनका निधन हुआ था। तो देखिए, एक ही दिन हमें 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं, है ना, और किसी की वर्दी में सेवा, किसी के जीवन में उम्र का सम्मान, किसी के विचारों में बदलाव की चाह और किसी के निर्णय में अदम्य साहस। 1 अक्टूबर शायद हमें यही याद दिलाता है कि समाज सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत। और देखिए हमारे सवाल के जवाब में हमारे साथ हमारे कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। तो ये हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिखते हैं स्कूल डेज की फोटो आज है जो आज तक संभाल के रखी है 10th क्लास की। हाँ वो वाले समय की ना फोटो सच में सबको दिन में और दिल में हमेशा रहती है। फिर हमारे साथ कौन जुड़ी है, ये उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं नमस्ते मैडम जी, हमारी बचपन की तस्वीर हम सब बहन भाई की साथ में वो आज तक है और हमारे माताजी पिताजी की वो तस्वीर भी अच्छी लगती और याद आती है जब हम छोटे छोटे दिखते थे। हाँ ये सारी बातें ना हम सभी को बहुत याद आती हैं, बचपन की कुछ तस्वीर सच में हमारे दिमाग में हमारे ख्याल में हमेशा रह जाती है। फिर अच्छा ही चरणदास जी लिखते हैं, अच्छा राजू अग्रवाल जी, केशव, विनोद टेलर, साहिल चौधरीवास हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि आपके नमस्कार कहती आवाज़ पहचान गया। क्या बात है, शुक्रिया, मतलब आप हमारे साथ में इतने दिल से जुड़े हैं कि आप हमारे लहजे से पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है। धन्यवाद। ये लिखते हैं कि मैं 3 साल का बच्चा था तब से लेकर आज तक सब कुछ मेरे दिमाग में मौजूद है, लेकिन एक तस्वीर कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बेटी का लड़का। ओहो ये ना देखिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका लिख रहे हैं कि उनके 7 साल का मासूम हम छोड़कर चला गया। देखिए मतलब ये मेरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ, और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर इसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, लिखते हैं आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ साधर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम सर। फिर लिखते हैं कि बचपन की बहन और भाइयों की ब्लैक एंड वाइट ग्रुप फोटो जो आज भी हमारे दिल में बहुत बड़ी याद है और हमेशा रहेगी। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी। आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक प्यार जैसी कौंधती रहती हैं, एक लहर उठाती रहती हैं, कुछ तस्वीर दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं।

जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा प्यारा कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। देखिए, हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, है ना? आप भी यही चाहते हैं। तो सड़कें चमकती रहें, गलियों में कूड़ा न हो, नालियां साफ रहें और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना दिखाई दे। वाह वाह, कितना अच्छा लगता है ना ऐसा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला इतना ही साफ सुथरा हो। लेकिन एक सवाल है, क्या साफ सुथरा शहर सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? देखिए, सुबह जब सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगाता है तो उसके कुछ घंटे बाद उसी सड़क पर कचरे का टुकड़ा कौन छोड़ जाता है? कूड़ेदान सामने होते हुए भी उसके बाहर कचरा कौन रख देता है? और घर से निकला छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जब नाली में पहुंचता है तो वह आखिर वहां तक आता कैसे है? सोचा है कभी? सोचा तो होगा, क्योंकि सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शहर हमारा भी तो है। फिर साफ सफाई को सिर्फ झाड़ू और कूड़ा उठाने तक सीमित कर देना शायद ठीक नहीं। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी तो जुड़ा हुआ है। घर का कचरा सही जगह पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा न फैलाना और किसी दूसरे की मेहनत का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर शहर की तस्वीर बदलती हैं। और शायद सफाई कर्मी के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि वह जिस जगह को साफ करके जाए, हम उसे दोबारा गंदा न करें। क्योंकि शहर की सफाई में झाड़ू किसी एक के हाथ में हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक समावेशी इसमें योगदान जरूरी है ना? फिर आप जहां जाएंगे हर जगह आपको खूबसूरत निगाहें और खूबसूरत चीजों का दर्शन होगा, है ना?

फिल्म प्रेम पर्वत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ी हैं, लिखते हैं सोनाली बेटा राम राम राम राम सर। फिर ये लिख रहे हैं कौन, ये हैं गौरीशंकर जी नांगलोई से। ये लिखते हैं बचपन में जो दीवार पर तस्वीर बनाया करते थे दिवाली के टाइम पर वह आज भी याद है। उस दौरान घर में कैमरे का साधन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, लेकिन रेडियो सुनते थे। वह यादें दिमाग में फिट रहती हैं। जो मन में खुशी उस टाइम पर महसूस होती थी वह आज नहीं है। अब तो अपनी सोच बदल कर खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब अच्छा ही होगा। सच बात है, और आपकी यही पॉजिटिव जो बातें हैं, जो सकारात्मक सोच है, ये हमेशा बना कर रखिएगा। फिर हमारे साथ ये जुड़े हैं चौधरी वास जी, जी पंकज बिंदल जी हैं। ये लिखते हैं कि उनके पिताजी को तस्वीरों से बहुत प्रेम है और वो पूरे समय अपने घर में अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरें लगा के रखते हैं। क्या बात है। देखिए ऐसी ही चीज़ें जो होती है ना, वो हमें अपनी उन बीते दिनों की याद दिलाती है जब हमारे पास वो जो समय था वो शायद उन्हीं में कैद होकर रह गया, तो उन तस्वीरों को देखकर हम लगातार उन्हीं सारी बातों को दोबारा से याद करती हैं। चलिए जब हम बात करते हैं पुराने समय की तस्वीरों की, तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना ज़रूरी समझते हैं जो हमारी धरोहर से जुड़ी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। यह है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का भूसरा गांव। ये ना अपनी एक ऐसी पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है जिसमें सुई और धागे के सहारे कपड़े पर सिर्फ आकृतियाँ ही नहीं बल्कि जीवन के रंग भी उकेरे जाते हैं। यह कला, पता है आपको क्या नाम है इसका? ये है सुजनी कढ़ाई। सुजनी की परंपरा बहुत पुरानी है और पहले पुराने कपड़ों की कई परतों को सिलकर उन पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती थी। इनका इस्तेमाल खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए बिछावन या ओढ़नी के कपड़े के रूप में किया जाता था और धीरे धीरे इस कढ़ाई में रोजमर्रा के जीवन, प्रकृति और सामाजिक अनुभवों से जुड़े चित्र भी दिखाई देने लगे। फिर आपको पता है दोस्तों, भूसरा की जो महिला कारीगरों ने ना इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि सूजनी कढ़ाई सिर्फ सजावट नहीं रही बल्कि ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी कल्पना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम भी बन गई। इस पारंपरिक कला को 2006 में भौगोलिक संकेत यानी GI मान्यता मिली। सोचिए, एक सुई, कुछ धागे और कपड़ों का एक साधारण सा टुकड़ा और उससे बनती ऐसी कहानी जो पीढ़ियों का सफर तय कर लेती है। यही तो हमारी लोककला की खूबसूरती है ना। हाथों का हुनर जब परंपरा से मिलता है तो साधारण

कॉटन कपड़ा भी एक विरासत बन जाता है, और इसी तरह विरासत है क्या हमारे लोकगीत भी। तो आइए सुनते हैं लोकगीत की मिठास लिए ये एक गाना जो फिल्म हीरा मोती से है।

फिल्म हीरा मोती में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में ये एक बहुत प्यारा सा गीत। अच्छा देखिए, बातों बातों से बातें निकलती हैं तो यादें भी आपको बार बार आती है। तो ऐसे ही हमारे जो श्रोता हैं उमेश कुमार जी, वो एक और हमें मेल करते हैं और फिर उसमें अपनी यादें सहेज रहे हैं। कह रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मेरे पिताजी ने दीवार पर लक्ष्मी माता जी की तस्वीर बनाई हुई थी जब हम छोटे थे, वो तस्वीर भी आज तक बहुत याद है। अरे वाह, देखिए फिर ऐसी ही तो चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। तो बस आप भी हमारे साथ अपनी यादों को संजोइए, हमें बताइए आपकी कौन सी तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा करीब है। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। वह घर से बाहर निकले तो मन में डर न हो, रास्ते सुरक्षित हों और उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात करते हुए, क्या हम कभी यह भी सोचते हैं कि उसे खुद अपने लिए खड़े होने के काबिल कैसे बनाया जाए? बेटी को न सिर्फ यह बताना काफ़ी नहीं है कि किन रास्तों से बचना है, किससे सावधान रहना है, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति में अपनी बात कैसे रखनी है, मदद कैसे मांगनी है, अपने फैसले कैसे लेने हैं और अपने अधिकारों को कैसे समझना है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेने का भरोसा, पैसों को समझने की आदत, घर और

बाहर के जरूरी काम संभाल पाने का आत्मविश्वास, ये सब उसकी आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है। कई बार ना प्यार में हम बेटियों के लिए हर मुश्किल आसान कर देते हैं और करना कर देना चाहते हैं, लेकिन हर मुश्किल को उनसे दूर कर देना शायद उन्हें मजबूत बनाने का तरीका नहीं है। देखिए, प्यार कीजिए, लाड़ कीजिए, लेकिन ना उन्हें रास्ते खुद तय करने दीजिए, कुछ फैसले खुद लेने दीजिए और कभी कभी गलती करने की गुंजाइश भी दीजिए, है ना। क्योंकि बेटियों के साथ हमेशा कोई और खड़ा रहे यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब कभी उसे अकेले खड़ा होना पड़े तब उसे अपने भीतर की ताकत पर भरोसा हो। सुरक्षित बेटी जरूरी है, लेकिन सुरक्षित होने के साथ अपने फैसले खुद लेने वाली, अपने पैरों पर खड़ी और अपने जीवन की दिशा तय करने वाली बेटी, शायद यही उसकी असली मजबूती है।

फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसमें आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के साथ कुमार शानू की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप भी मानेंगे कि कभी कभी समझ शब्दों की बहुत मोहताज नहीं होती, है ना? सामने वाला कुछ भी कहे या कुछ कहे भी नहीं, फिर भी उसकी आंखों का ठहराव, आवाज की हल्की सी थरथराहट या अचानक आई खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि हर बात कहनी ना पड़े, कुछ बातें इशारों में ही पढ़ ली जाएं। किसी के मैं ठीक हूँ के पीछे जो छिप

उदासी है उसको पहचान लेना, किसी की हंसी में थकान सुन लेना, या बिना पूछे उसके पास चुपचाप बैठ जाना, यही तो वह समझ है जो कभी शब्दों से कहीं आगे होती है ना। और जिन्हें समझना आता है उन्हें हर बात बतानी नहीं पड़ती, और जिन्हें नहीं समझना उनके सामने पूरी कहानी कह देने के बाद भी कुछ अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार बहुत सी बातें अनकही भी होती हैं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं।

फिल्म आंगन की कली। इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, अब घड़ी हमें यही इशारा कर रही है और आप भी समझ गए कि अब हम इस कार्यक्रम को आगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत

में कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The passengers and crew members, including off-duty personnel, reached the cockpit, subdued the attacker, and helped stabilize the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in northwestern Saudi Arabia. Prime Minister Narendra Modi, U.S. President Donald Trump, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed Captain Smith Machar. At the Asian Games in men's cricket, India trounced Sri Lanka by 124 runs to set up a high-voltage final against Pakistan. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का. एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: 10 लाख की लॉटरी
3: मुझे.
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान.
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: जी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ. मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी. कार्यक्रम एक ही फिल्म में स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे ना तो किसी उम्र की सरहद में हम बांध सकते हैं और ना ही इसे ख़त्म कर सकते हैं. जब दो दिल मिलते हैं तो जो फिजाएं होती हैं उनमें एक अलग सा संगीत खुल जाता है ना. अब आप बात करेंगे कि आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस मोहब्बत के साथ क्यों कर रहे हैं, तो भाई अगर हम रुपहले पर्दे की बात करें तो सन 1981 की वो क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसने प्यार की एक नई परिभाषा लिखी. जी हाँ दोस्तों, वो फिल्म प्रेम गीत. तो थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आपको हम ले चलेंगे फिल्म प्रेम गीत के उसी सुहाने सफर पर. जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ किस्से, उसके संगीत के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, और सुनेंगे वो गाने जो आज भी आपकी और हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं. तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ और अपने संदेशों के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए. तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और शुरुआत में लीजिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म प्रेम गीत से. तो करते हैं सफ़र की शुरुआत.

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज की फिल्म प्रेम गीत सन 1981 में बनी ये बॉलीवुड फिल्म, जिसका निर्देशन किया सुदेश सर ने। और इस फिल्म के कलाकारों की अगर बात करें तो राज बब्बर और अनीता राज के खूबसूरत अदाकारी से सजी ये फिल्म प्रेम गीत। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इतनी इमोशनल, इतनी प्यारी कहानी है ना, कि वाकई में इस फिल्म को देखते हुए ना हर कोई इंसान इस फिल्म की कहानी में डूब जाता है। और कहानी हम आपको बता देते हैं भाई, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो कहानी सुनकर मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप ज़रूर इस फिल्म को देखने का मन करेगा आपका। फिल्म की कहानी घूमती है आकाश यानी कि राज बब्बर के इर्द गिर्द, जो कि एक मशहूर शायर हैं, और अपने अलग नाम यानी कि निशांत से वो शायरी लिखते हैं। आकाश की जो शायरी है उसकी दीवानी होती है शिखा यानी कि अनीता राज, जो कि एक डांसर हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की हैं। खतों से सिलसिला शुरू होता है उन दोनों का धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती हैं, बहुत बड़ी दीवानी होती हैं आकाश की शायरी की, और ख़तों से सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाता है, और आकाश अपनी शायरी से शिखा का दिल जीत लेता है। दोनों सपने देखते हैं कि शादी में बनने का, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में तो उनके कुछ और ही लिखा था। कहानी में ट्विस्ट या कहें कि एक दर्दनाक मोड़ आता है जब अचानक से शिखा की तबीयत खराब होती है, और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शिखा को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। ये बात जानने के बाद आकाश पर तो मानो मतलब एकदम से बहुत सारा दुख आ करके गिर जाता है और वो बहुत परेशान होता है, लेकिन शिखा के सामने वो सब सच्चाई नहीं आने देता है, और अपने दिल में उस दर्द को छिपाकर वो शिखा की जो ज़िंदगी होती है पूरी तरह से उसको खुशियों और प्यार से भरने में लग जाता है। शिखा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि उसकी जो सांसें हैं वो गिन कर चल रही हैं। और अंत में आता है फिल्म का आखिरी हिस्सा या कहें कि क्लाइमेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पर शिखा आकाश की बाहों में दम तोड़ देती है, लेकिन उसके प्यार का गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक छोटे रूप में कहें तो जो प्रेम गीत फिल्म है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार में त्याग, समर्पण और हर पल को खुलकर जीने की एक खूबसूरत सी कहानी है। है ना बहुत ही खूबसूरत? तो लीजिए चलते हैं अगले पड़ाव पर आशा जी की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1981 की ये खूबसूरत सी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म प्रेम गीत। जी दोस्तों, इस फिल्म यानी कि प्रेम गीत से हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिली एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, वो अभिनेत्री अनीता राज। जी हाँ दोस्तों, अनीता राज की ये पहली फिल्म थी और इस पहली ही फिल्म में उन्होंने काम किया राज बब्बर जी के साथ में, और उनकी दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी पसंद की गई कि वो रातों रात लोगों के दिलों पर छा गई। और राज बब्बर साहब को इस फिल्म में लेने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि राज बब्बर साहब ने उससे पहले सन 1980 में B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। और उनकी उस फिल्म में जो एक्टिंग थी, इतनी दमदार एक्टिंग उन्होंने की थी कि इंडस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह हिला के रख दिया था, और हर निर्माता निर्देशक समझ

गया था कि भाई ये ये जो कलाकार है, ये अभिनेता है, हर किरदार में, हर तरह के किरदार में जान फूंक सकता है। और क्योंकि जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनको चाहिए था कोई ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो कि उनके इस बहुत ही इमोशनल और थोड़े गहराई से जुड़े हुए किरदार में जान फूंक सके। और उस किरदार के लिए राज बब्बर से बेहतर अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता था। और यही सोचकर सुदेश इस्सर जी ने इस फिल्म में नए कॉम्बिनेशन, एक नई फ्रेश जोड़ी को लाने का फैसला किया। और बनी ये खूबसूरत जोड़ी, अनीता राज और राज बब्बर साहब की। वैसे आपको बता दें कि जो अनीता राज हैं, वो अभिनेता जगदीश राज जी की बेटी हैं, और उन्होंने इसी फिल्म से किया अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत। वैसे जब अनीता राज जी इस फिल्म में आई, और उन्होंने जब पहला दिन शूटिंग का, तो वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी कि राज बब्बर साहब, जो कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस थे, और उनकी जो आवाज़ थी, वो जिस तरह की एक इंटेंस आवाज़ उनकी थी, उसका तो उस वक्त में हर कोई दीवाना था। उनके साथ काम करते करते वो बहुत नर्वस थी। और जब इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी, एक रोमांटिक डांस सीन की, तो अनीता राज जी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। और जब राज बब्बर साहब ने ये देखा कि भाई जो ये लड़की है, तो बहुत बुरी तरह घबराई हुई, इस तरह से कैसे फिल्म की शूटिंग होगी, किस तरह से केमिस्ट्री दिखेगी, तो वो अनीता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, मुझे समझो ही नहीं कि मैं राज बब्बर हूँ, तुम मुझे आकाश समझो, जो कि तुम्हारा दोस्त है। बिल्कुल उसी की तरह, अपने एक दोस्त की तरह से मेरे साथ में काम करो। और बस फिर क्या था, अनीता राज का जो डर है, वो एक चुटकी में गायब हो गया। और उसके बाद दोनों ने कितनी सहजता के साथ में एक्टिंग की, और किस तरह की केमिस्ट्री उनकी पर्दे पर दिखी है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जी दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत, क्या शब्द है ना। वाकई में जब इस फिल्म के संगीत की बात आती है ना, तो वाकई पूरी तरह से दिल में उतर जाता है, क्योंकि जो इस फिल्म के गीत हैं उनके शब्द भी पूरी तरह से हमारी रूह में उतर जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इस फिल्म का जो संगीत है वो भारतीय सिनेमा के गजल सम्राट जगजीत सिंह जी ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पूरा संगीत जगजीत सिंह जी ने तैयार किया, और इसके जितने भी दिलकश गीत हैं उनको लिखा मशहूर गीतकार इंदीवर जी ने। शायरी और संगीत का एक खूबसूरत बेजोड़ तालमेल जो आज भी सुनने वाले को एकदम तरोताजा कर देता है। और उस पर ये गीत जो कि अभी आपने सुना, भाई ये तो जगजीत सिंह जी की करियर का वो गीत है कि उनकी पहचान इस गीत से है। बेशक उन्होंने बहुत सी गजलें की, लेकिन ये गीत ऐसा है कि इस गीत को सुनते ही सबसे पहले जगजीत सिंह का नाम याद आता है ना। जी दोस्तों, और जब इस प्रोग्राम को करते हैं तो हमें भी याद आते हैं हमारे बहुत से श्रोता जिनके संदेश हम तक आ चुके हैं। संदेश हम शामिल कर लेते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव जगुताई, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से जुड़े हुए हमारे साथ भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालो छत्तीसगढ़ से डोमिंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता गीता जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, शिप्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांवफरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह, मीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। और ये अगला संदेश मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता जी का है, और ये संदेश आया है राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विनोद टेलर, साहिल का गांव चौधरीवास, हरियाणा हिसार से। और ये अगला संदेश आया है हमारे पास कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से, और इसको भेजने वाले हैं संदीप, ज्योति, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़ जी का। डीबी राणा जी जुड़े हमारे साथ नेहरू विहार से, और ये अगला संदेश

बताया अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और नन्हे पोते अन्विका तनुश्री गुप्ता जी का पीरा बाजार झुमरी तलैया से। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पल्स और वेलिस डिकैस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से। सुदर्शन मुखी अनीता जी के साथ जुड़े हैं, सिमरन मुखी उनके साथ हैं, शांति नगर सोनीपत से। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। जी दोस्तों, और अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाया है स्वर्ण सिंह जी का, एक बार फिर से संदेश है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने बात की, फिल्म प्रेम गीत के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म का नाम बिल्कुल पूरी तरह इसकी कहानी और गीतों पर सार्थक होता है, प्रेम गीत। जितने भी गीत हैं सब प्यार से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की, जाएगा कहीं नहीं, 2:30 पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार, और 3 बजे मैटिनी मेलेडीज के साथ अर्चना गोयल जी। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। नमस्कार।

0: अधिरक्षा सिलसिले दी रीढ़े।
1: मैं समझता हूं कि अगर यह सिस्टम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो यह न सिर्फ हमारी वेटरन्स और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को भी एक नए लेवल पर यह पहुंचा देगा और यह समय की मांग है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चुनौती को भी उसी डेडिकेशन के साथ पूरा करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने विभाग नूं अपील कीती कि ओह अपनी प्रक्रियावां विच राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता ऑडिटिंग दे सब तों वधिया ढंग तरीकियां नूं अपनाए ते शामिल करे अते देश ते दुनिया भर विच बदलदे मापदंडां नाल तालमेल रखे। श्री सिंह ने रक्षा खेत्र विच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अते मशीन लर्निंग दी अहमियत ते वी जोर दित्ता।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, ये सब टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इन टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन की मदद से हम ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं।
0: रक्षा मंत्रालय ने मिलिटरी नर्सिंग सेवा के 121वें स्थापना दिवस से उन्होंने सारे नर्सिंग मुलाजमान को श्रद्धांजलि भेंट की थी जो एक सदी तो वध समय तो समर्पण हमदर्दी और सेवा की भावना नाल बहादुर फौजियों और उन्होंने परिवारों की देखभाल करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुस्कुराहट के नाल सेवा की भावना नाल ए समर्पित मुलाजम सेहत संभाल के खेत्र में अपने अटुट योगदान राही सेवा ते मनुखता की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। सरकार ने खंड डीलरां लई भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन कर दित्ती है ते भंडार रखण दी सीमा 1000 क्विंटल तय कीती है जो इस महीने दी 15 तरीक तो लागू होएगी। ए इस साल नवंबर तक लागू रहेगी। खपतकार मामलों बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने त्योहारां दे समय दौरान जमाखोरी नूं रोकण अते खपतकारां नूं सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई खंड भंडार रखण दे नियमां नूं सोधिया है। मंत्रालय ने भी कहा है कि औसत परचून खंड दीआं कीमतां अगस्त तों 15% घट गईआं ने अते होर भी घटण दी उम्मीद है। मिलदी प्रक्रिया तों बाद दीआं खंड दीआं कीमतां विच भी करीब 28% दी गिरावट आई है अते पिछले 3 हफ्तिआं दौरान स्थिर रहीआं ने। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा XHandle @AIRRNewsLandar। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुदरत दे संतुलन नूं बनाए रखण ते आउण वालियां पीढ़ियां लई एक कीमती विरसे नूं सुरक्षित रखण लई जंगलां ते जंगली जीवां दी रक्षा करना जरूरी है। जंगली जीव हफ्ते 2026 दे मौके ते अपने संदेश विच श्री मोदी ने नागरिकां नूं जंगली जीवां ते उनां दे निवास स्थानां दी रक्षा विच योगदान पाउण दी अपील कीती। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया से चल रहा एक गजट नोटिफिकेशन जिस विच दावा किया गया कि सारे शनिचरवारां नूं जनतक खेतर दे बैंकां लई जनतक छुट्टियां ऐलानियां गईआं ने झूठा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रेस सूचना ब्यूरो दी तथ जांच इकाई ने कहा है कि केंद्रीय खजाना मंत्रालय वल्लों अजिही कोई सूचना जारी नहीं कीती है। ब्राजील अते भारत मरकोसुर नाल अपने मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते PTA नाल अगे वध रहे ने। मरकोसुर दक्षिणी अमरीकी देशां दा एक व्यापारक समूह है जिस विच ब्राजील अते होर दक्षिणी अमरीकी आर्थिकतावां शामिल ने। ब्राजील दे विकास सनत व्यापार अते सेवावां मंत्री मार्शियो एलियस रोजा ने कहा कि मौजूदा समझौता सिर्फ 450 टैरिफ लाइनां नूं कवर करदा है अते बेहद सीमित है। अमरीका विच जीवी व्यापार मंत्रियां दी मीटिंग दौरान भारतीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल नाल मुलाकात तों बाद श्री रोजा ने कहा कि दोवां धिरां ने व्यापक गल्लबात लई इक ढांचे नूं अंतिम रूप दे दित्ता है। उन्होंने कहा कि दोवां धिरां नूं व्यापार समझौते दे पसार लई ठोस तजवीज़ विकसित करन विच मदद करेगा। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आजाद व्यापार समझौते ते दस्तखत करन अते लागू करन वल होई प्रगति दी समीक्षा की थी। उन्होंने अमरीका विच जीवी व्यापार मंत्रियों दी मीटिंग दे मौके ते व्यापार ते आर्थिक सुरक्षा लई यूरोपियन कमिश्नर मारोस सेफकोविच नाल गलबात की थी। दोवां धिरां ने भारतीय व्यापार ते तकनालोजी कौंसल WTO सुधार अते जीवी विच सांझियां तरजीहां ते भी विचार वटांदरा कीता। भारतीय कंपाउंड तीरअंदाज गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु ने आज एशियाई खेडां विच मर्दा दा व्यक्तिगत कांसी दा तमगा जित्तिया है। स्क्वैश विच भारत दी औरतां दी टीम नूं सेमीफाइनल विच हांगकांग तों 1-2 नाल हारन तों बाद कांसी दे तमगे नाल सबर करना पिया। इस दौरान सेपाता क्रॉ विच भारत दे मर्दा दे क्वाड्रेंट मुकाबले विच वियतनाम नूं 2-0 नाल हरा के सेमीफाइनल विच प्रवेश करके घट्टो घट 1 कांसी दा तमगा पक्का कर लिया है। इस दौरान मर्दा दे क्रिकेट विच भारत ने श्रीलंका नूं 124 दौड़ां नाल हरा के पाकिस्तान खिलाफ फाइनल विच थां बना ली है। आखर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPSC दे शताब्दी समारोह नूं संबोधन कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार

0: ਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯੂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज, पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है, ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मुअस्सर अंदाज से बरूए कार्ड लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के 100 साल के सफर के दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए हैं, लेकिन इस इदारे पर लोगों का एतमाद आज भी उसी तरह कायम है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हुसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करें।
2: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका बुनियादी उसूल अवाम दोस्त, निहायत सरगर्म और बेहतर हुक्मरानी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देवो भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है, उसे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संगे मील तय किए हैं और इसमें कई नए पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्रियों में इजाफा हुआ है, जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है, जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। यूपीएससी के चेयरपर्सन डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही परखा जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ

0: यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवंबर तक नाफिज रहेगी। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला अफवाज को मजबूत करने पर मखसूस तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर मुआशी निजाम को भी मजबूत कर दिया जाए तो इससे पूरा दिफाई इंतजाम और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर मियारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदामात को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदिराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ये हुसूलियाबी एक संगे मील की हैसियत रखती है। भारत ने खुराक की यकीनी फराहमी के लिए खुराक को आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यह बात अमरीका के मिलवॉकी में G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के इजलास के दौरान कही। जनाब गोयल ने उजागर किया कि मुश्तरका मकसद ये होना चाहिए कि खुराक की यकीनी फराहमी इस्तेहकाम और तआवुन का जरिया बनी रहे। वजीर तिजारत ने भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत और इसके निफाज की जानिब पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के मौके पर तिजारत और इक्तिसादी सिक्योरिटी के यूरोपीय कमिश्नर के साथ बातचीत की। सऊदी अरब के हुकाम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उस कोपायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की थी। ओमान के कोपायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। 2 मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कैप्टन स्मिट माछर की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उन पर बेहद फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनके गैर मामूली हौसले और हाजिर दिमागी ने सभी को मुतासिर किया है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और उनके गैर मामूली जज्बे को सलाम पेश किया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शदीद खतरे के दौरान कैप्टन स्मिट की गैर मामूली बहादुरी और हाजिर दिमागी तारीफ और तहसीन की मुस्तहिक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिट ने दूसरों की जान बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। आज हम इस खसूसी सीरीज में इस बात का तस्किरा कर रहे हैं कि कैसे असम में ब्रह्मपुत्र दरिया पर बोगीबील पुल की तकमील से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: ब्रह्मपुत्र दरिया पर तामीर शुदा बोगीबील दरिया शुमाली किनारे को जनूबी किनारे से जोड़ता है। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस पुल के इफ्तिताह के बाद आसाम के नकलो हमल के निजाम को नई तहरीक मिली। 2018 में इस पुल का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने इसे खित्ते के अवाम के लिए लाइफ लाइन से ताबीर किया था। आसाम से राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
0: तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में कम से कम 9 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल हुए हमलों में कुनार के शल्तान जिले और हेलमंद के गार्मसेर जिले में 3 मकान तबाह हो गए। ये ताजा हमले अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में तेजी आने के दौरान किए गए। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिनकल नोबल ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वजीर आजम ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है ताकि जखीरा अंदोजी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण

0: करण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता

0: लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देशभर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। नमस्कार दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे कोई अपना बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हो, और कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनका संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, सीधे दिल में उतर जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी महान हस्ती को जिनकी धुनों में बंगाल की मिट्टी की खुशबू थी, लोक संगीत की सादगी थी और शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और आम इंसान के दिल की धड़कन थी। नाम है सचिन देव वर्मन, यानी SD वर्मन।
1: वहाँ कौन है तेरा?
0: और हाँ, कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों।

एसडी वर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिचुरा के राज परिवार से जुड़े परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मन राजसी सुख सुविधाओं से ज्यादा संगीत की दुनिया में रमता था। उन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और बंगाल की संगीत परंपरा से गहरा प्रभाव लिया। उनकी संगीत यात्रा की सबसे खास बात थी उनकी सादगी। वो जानते थे कि अच्छी धुन को बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती। उनका संगीत सुनते हुए एक बात महसूस होती है कि वो धुन को कभी बोझिल नहीं होने देते थे। बहुत कम साज, बहुत सरल धुन, लेकिन असर इतना गहरा कि गीत बरसों बाद भी ताजा लगता है।

संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ साथ कदम रखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों तथा हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। मिली, अभिमान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी, ये उनकी प्रमुख फिल्में थी जिन्होंने सिनेमा में अपना इतिहास बनाया। उन्होंने कुछ फिल्मों में गीतों में अपनी आवाज भी थी, जिसमें कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए जो आज भी लोगों के हृदय में बसे हैं, जिसमें है आराधना का वो गीत काहे को रोए, वाकई दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए बढ़ते हैं अब आपके संदेशों की तरफ। हमें ये संदेश मिला है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, भेजने वाले हैं तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरीधान खुराना। और ये मैसेज हमें भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह और शुभदीप सिंह। और तुलसी जी का एक और मैसेज आया और ये कह रहे हैं कि अर्चना गोयल जी नमस्कार, बड़े दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज़ सुनी है कि कलाकार में आज एस डी वर्मन जी को याद किया जा रहा है और गाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो तुलसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गौरैया जालंधर से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और इंद्रभान सिंह जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं कि एस डी वर्मन के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, उनके गीत पसंद आ रहे हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अपना संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ हैं अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसीस, सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। गांव कुम्हार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिवार। और ये लिख रहे हैं कि आज आप महान संगीतकार सचिन देव वर्मन के बारे में, जिन्हें हम सचिन दा भी कहते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके बारे में बेहतरीन बातें रोचक किसी और नगमे सुनवा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। तो धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब संदेश के बाद सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बंदनी से।

बर्मन दा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात प्रचलित थी कि वो तंग हाथ वाले थे, यानी ज्यादा खर्चा नहीं किया करते थे। उन्हें पान खाने का बेहद शौक था और वो अपने पान भारतीय विद्या भवन चौपाटी से मंगवाते थे। वो फुटबॉल के काफी शौकीन थे। एक बार मोहन बागान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि वो आज खुशी का गीत नहीं बना सकते, यदि कोई दुख का गीत बजवाना हो तो वो उसके लिए तैयार हैं। दरअसल वो जो भी काम करते थे पूरी तल्लीनता के साथ किया करते थे।

एस डी वर्मन को 1958 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के साथ साथ 1958 में एशिया फिल्म सोसाइटी अवार्ड भी प्राप्त हुआ और 1970 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म आराधना के लिए। वर्मन दा के संगीत में रचनात्मकता का अलग ही रूप दिखाई देता है, जैसे गाइड का गीत वहां कौन है तेरा, यहाँ प्रेम है, दर्शन है, जीवन की उलझने हैं और उससे निकलने की कोशिश भी। उनकी धुनों में यही विविधता उन्हें बाकी संगीतकारों से अलग पहचान देती है। उनके पुत्र आरडी वर्मन जो कि एक मजे हुए संगीतकार रहे, उनमें भी यही विविधता थी संगीत की।

आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने याद किया उस संगीतकार को जिसने हिंदी फिल्म संगीत को सिर्फ धुन नहीं दी बल्कि उसे भावनाएं दी। उनके संगीत में कभी नदी की रवानी सुनाई देती है तो कभी किसी प्रेमी का इंतजार, कभी जिंदगी की उदासी तो कभी खिलखिलाती हुई हंसी। शायद उनके गीत समय के साथ पुराने नहीं हुए। कार्यक्रम संपन्न करने से पहले उनके लिए दो पंक्तियाँ, कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर बार सुनने पर एक नई याद दे जाती हैं। कुछ संगीतकार चले जाते हैं लेकिन उनका संगीत चलता रहता है हमारे साथ। और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मैटनी मेलोडीज में। मैटनी मेलोडीज वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको गोल्डन इरा के गीत सुनाते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि दिल में उतर जाता है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें किसी के आने की खुशी भी होती है और उसके चले जाने के बाद बची हुई यादों की कसक भी। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत है फिल्म आकाशदीप से। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अपने भीतर एक ऐसी भावनात्मक दुनिया समेटे हुए है। इस गीत की खूबसूरती सिर्फ इसके बोलों में नहीं बल्कि इसकी धुन और गायकी में भी है। तो चलिए सुनते हैं ये मीठा सा गीत।

और अब इस गीत के बाद अब आपके लिए एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम, उमंग और यादों की खूबसूरत दुनिया है। इस गीत में ऐसी मिठास है जो दिल को छूकर सीधे भावनाओं तक जाती है। इसके बोलों में प्रेम की आहट है तो संगीत में उस एहसास की धड़कन, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। रंग दिल की धड़कन फिल्म पतंग का वो गीत जिसमें दिल के रंग हैं, प्रेम की हलचल है और उस एहसास की गर्माहट जो समय बीत जाने के बाद भी मन में कायम रहती है। तो आइए मैटनी मेलोडीज का ये खूबसूरत नगमा, शायद इसे सुनते हुए आपके दिल में भी

दिन ढलता है तो शाम की खामोशी में अक्सर कुछ पुरानी यादें वापस लौट आती हैं, किसी अपने की आवाज़, किसी से मुलाकात और साथ बिताए कुछ खास पल। फिल्म आनंद का वो गीत भी कुछ ऐसे ही एहसासों को अपने भीतर समेटे हुए है, जहाँ ढलती शाम के साथ साथ दिल भी किसी अपने को पुकारता है। तो आइए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत यादगार गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन से शर्माए तो लगता है कि तुम हो।

कभी कभी किसी की आंखें बिना कुछ कहे ही दिल की पूरी कहानी कह जाती हैं, और जब उन नैनों में शरारत हो तो निगाहें भी जैसे दिल से खेलने लगती हैं। फिल्म ऊंचे लोग का ये गीत भी कुछ ऐसे ही चंचल नैनों की खूबसूरती और उसकी शोख अदाओं को गीत में पिरोता है। तो आइए सुनते हैं उस दौर का एक बेहद दिलकश गीत।

दिल की चाहत कब लफ्जों की मोहताज होती है, कभी कभी दिल यूं ही किसी को अपना मान लेता है और मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। फिल्म दूल्हा दुल्हन का ये खूबसूरत गीत।

और दोस्तों आप सुनते हैं खास गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मिस्टर एक्शन बॉम्बे से। मोहब्बत में इंतजार भी है, तड़प भी है और बिछड़ने का डर भी, और जब दिल की बात महबूब तक ना पहुंच पाए तो हर पल जैसे कयामत सा लगता है। इन्हीं जज्बातों को आवाज देता एक बेहद लोकप्रिय गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मैटनी मेलोडीज कार्यक्रम। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दोस्त अर्चना गोयल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: लिखी गई तो आमतौर से ग्रहण का जिक्र आता है राजेंद्र सिंह बेदी के, उसमें राहुल भी है, केतु भी है, भैरव भी है, ये सारे किरदार हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है सातीर की।
1: जी,
0: उससे पहले लिखे गए थे लेकिन उस टूर के तौर पे नहीं जिक्र किया गया, जैसे गणेश का या पार्वती का। क्या हाल साहब?
1: मेरे ख्याल में मैं तो आग का दरिया से शुरू करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें तो। दो तीन बातें जो बुनियादी तौर पर, जैसा कि जीने बड़े साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है बतौर इंसान उसको समझना, और एक इंसान की कोशिश होती है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। उसके लिए जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी जितनी आज है, तो बहुत सारे मिथ, अस्तूर जिसे कहते हैं, वो हर इलाके में, हर तहजीब में गढ़े गए। और जाहिर है कि हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो भी एक बड़ी तहजीब है, उसका जो नैरेटिव है बहुत ग्रैंड है और बहुत वसी है, और उसके में किरदार बहुत सारे आते हैं। दूसरी तरफ ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी हैं जो तकरीबन मिलती जुलती हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। बहुत बड़ा उनका इलाका तो नहीं है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कहानियाँ और जो इमेजिनेशन है, तस्वूर है, वो बहुत हैरत अंगेज़ है। तो हमारे यहाँ मोटे तौर पर जो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी से हम कहते हैं सनमियात, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है, या सातीर भी इस्तेमाल होता है, उसमें तीन बुनियादी गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो खालिक है, क्रिएटर हैं, और उनकी शरीक हयात है सरस्वती। दूसरे विष्णु हैं जो प्रिजर्व करते हैं, आपकी ज़िंदगी का तहफ़ करते हैं, उनकी शरीक हयात लक्ष्मी हैं। और तीसरे शिव हैं, शरीक हयात उनकी पार्वती हैं या दुर्गा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो तांडव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी इन तीनों देवताओं के हाथ में पूरी ज़िंदगी की इब्तदा से लेके और आखिर तक आपके हाथ में है। तो फिर हमारे यहाँ जो तहजीब जिस तरह से डेवलप हुई, आर्यन तहजीब आई, प्री आर्यन तहजीब आई, इंडस वैली की तहजीब आई, वैदिक तहजीब आई, तो इसमें जो किरदार हैं और मोटिव हैं बदलते हैं। और संस्कृत लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर जाहिर है कि बहुत रिच हैं, और जो मुकामी ज़बानें हमारी उनमें भी ये सारी माइथोलॉजी कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तो बुनियादी तौर पे अच्छा, एक मार्क्सिस्ट स्कूल भी है सोशियोलॉजी में, वो तो इनको अनसाइंटिफिक कह के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे दानिशवर हैं, इंतज़ार हुसैन ख़ास तौर पर और दूसरे लोग हैं, वज़ीर आगा, उन्होंने जो मिथ है ना, ये अस्तूर और किस्सा गोई और दास्तान और दास्तानों में इनका इस्तेमाल तो बराबर किया है उन्होंने। इंतज़ार हुसैन तो कहते हैं कि मैं तो करबला भी देखूँगा और रामलीला भी देखूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरी तहजीब का हिस्सा है। तो ये सारे अस्तूर, ये सारे मिथ, ये मोटिफ जब अदब में और फिक्शन में, चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो एक अलग किस्म की तस्वीर बनती है।
2: सही है। देखिए, ऐसा है कि जब हम अस्तूर की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि दास्तान, जितनी भी दास्तान हैं, सब अस्तूर से भरी हुई हैं
1: जी,
2: और वहीं से मेरे ख्याल में ये चीज़ें आगे आई हैं। और इंतज़ार हुसैन के ताल्लुक़ से मैं एक बात ही बता दूं कि अब से चंद वर्ष पहले इंतज़ार हुसैन का मैंने और शमशेरान फारूकी साहब का इंटरव्यू किया था, एक लंबा इंटरव्यू जो बाद में शाये भी हुआ। तो उसमें बातों के दरमियान उन्होंने ये कहा कि हिंदू माइथोलॉजी बहुत फैसिनेट करती है मुझे और मुझे बहुत ही मज़ा आता है, मैं उसमें से बहुत सी चीज़ें छानता हूँ, फटकता हूँ और फिर अपने लिए लेता हूँ। और इसीलिए उन्होंने पंचतंत्र का पूरा सिलसिला पढ़ डाला। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, तो उनका हाँ, मैंने इन चीज़ों से खूब फ़ायदा उठाया और मैंने लिखा। तो एक तो ये इस तरह से उन्होंने उसको,
1: ये कलीला और दिमना के नाम से अरबी में भी तर्जुमा हुई है ना,
2: हाँ
1: पंचतंत्र
2: हुई है। तो ये जो इंतज़ार हुसैन थे वो उनके की सोच आम फिक्शन निगारों से ज़रा अलग हटकर थी। और ये सिलसिला आप उनकी कहानियाँ देखिए, मसलन जैसे जर्द कुत्ता है उनकी कहानी है, आखिरी आदमी, उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये कुछ अलग सा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंतज़ार हुसैन ने जो शुरू किया वो उर्दू अदब के लिए बहुत अहम था और उसका सिलसिला बाद तक चलता चला है। मसलन सलाम बिन रज़ाक़ की कहानी नदी
1: जी,
2: और बजूका सुरेंद्र प्रकाश की, तो आप एक लाइन है जो चलती चली आ रही है। इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ यकीनी तौर पर इस मरहले में सबसे ज़्यादा अहम नज़र आती है।
3: सलाम बिन रज़ाक की, कि आपने बेजुका का बड़ा नदी, आपने नदी का जिक्र किया,
2: हाँ।
3: बहुत ही अहम कहना चाहिए कि कहानी है जिसका बेस जो है

0: मजदूर है, उनके यहाँ कामधेनु एक अफसाना है,
1: बहुत अच्छा अफसाना है वो,
0: यकलव्य एक अफसाना है, और यकलव्य के अलावा श्रवण कुमार पर एक अफसाना
2: है। हाँ जी, तीन अफसाने हैं इस हवाले से उनके, एक तो आज का श्रवण कुमार है, दूसरा है एकलव्य, तीसरा अफसाना इसी की अगली कड़ी है वो है एकलव्य का अंगूठा।
0: अच्छा,
1: एकलव्य का
2: अंगूठा। तीनों में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस टूर को न सिर्फ बयान किया है बल्कि आज के हालात से उसका तदब्बुक पैदा किया है।
0: ये बहुत सही बात है,
3: ये यही सूरत नदी में भी है। नदी में तो उन्होंने कहीं ले जाके ग्रीक मैथोलॉजी को भी उसमें शामिल कर दिया है, और आज की जो सिचुएशन है, कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, उसमें अगर आप नदी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि तो उन्होंने आज की बात कही है, पीछे से ला के उन्होंने मामला को रखा है।
0: असरार गांधी साहब, आपने जो बात बहुत सही कही कि ये वो फनकार हैं जो उस्तूर को आज के सियाह में बामानी बना रहे हैं।
3: हाँ, बिल्कुल।
0: और देखिए, अगर ये नहीं हो पाता तो फिर वो फन कहाँ बना, अदब कहाँ बना, और फिर हमारी आपकी दिलचस्पी का मौजू कहाँ रहा।
2: सही।
0: और एक नज़रिया तो ये भी सामने आया है कि जो हमारा अदब आलिया है उसका जेनेसिस, उसकी जड़ें भी इन्हीं असातीर की दुनिया में है, यानी जिंदगी के इर्तका का एक पहला सिरा अगर असातीर हैं तो उसका आखिरी आज का सिरा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है वो आज का अदब है। आज की जो तख्लीकी हिस्सियतें हैं उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो यहाँ से वहाँ तक ये दोनों सिरे हैं, और दोनों जगह वो यही रहा है कि तख़य्युल की कार फरमाई है। आज के अदब में तख़य्युल की उतनी कार फरमाई नहीं है जितनी कार फरमाई असातीर के ज़माने में थी, और असरार गांधी साहब जैसा कि फरमा रहे थे दास्तानों के दौर में थी। लेकिन आज बग़ैर तख़य्युल के कोई फनपारा वजूद में नहीं आता। अहमियत इस बात की है कि आज का तख़य्युल ताकत अख़्ज़ करता है सदियों पुराने असातीर के वजूद में। यही तो वजह है कि नदी लिखी गई, यकलव्य लिखा गया, आज का यकलव्य लिखा गया। अरे भाई, वो नदी जो कामधेनु जो है, कामधेनु जैसी कहानी लिखी गई, ये है। आपको क्या लगता है अबू बकर अब्बास साहब?
2: जी बिल्कुल, देखिए इनका यहाँ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में और लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। मसलन इंतज़ार हुसैन के यहाँ देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तानी असातिर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर उसमें बौद्ध की असातिर भी आती है। तो उनका जो अफसाने ख़ासतौर से कछुए हैं,
1: कछुए
2: या पत्ते हैं या वापस है, तीनों में जो है बौद्ध जो जातक कहानियाँ होती थी वो जो हैरतअंगेज़ तौर पर उनका बयानिया है मशहूर करने वाला। तोते की ज़बानी कहानी सुना रहे तथागत, कहीं पे जो है वो कुत्ते की ज़बानी सुना रहे हैं, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से बयान किया है।
0: बहुत सही कहा।
2: इसके अलावा अगर खालिस हिंदुस्तानी, जाहिर है ये सारी हिंदुस्तानी ही मैथोलॉजी है, तो उसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, इलाकाई ये भी हैं, तो जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उनकी जो कहानियाँ हैं इस तरह की, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती
0: हैं। बहुत सही फरमा रहे हैं आप। और देखिए, ये जितने असातीर हैं अदब में, कभी तलमी बनकर, कभी तशबी, कभी इस्तियारा, कभी अलामत, इन सूरतों में अदब का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे फनकारे भी हैं जो पूरी तरह किसी उस्तूर में रचे बसे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस उस्तूर के बतन से वो आज का फिक्शन पैदा हो रहा है। ये भी होता आया है हमारे यहाँ, और इसमें बेहतरीन मिसाल जैसा हम सभी कह रहे थे इंतज़ार हुसैन है, और भी मिसालें हमें मिल जाएंगी।
1: मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा
0: जी,
1: कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हम कि कुतुबुद्दीन हैदर को नज़रअंदाज कर रहे हैं? और मुझे लगता है कुतुबुद्दीन हैदर कुछ सीनियर थी उनसे, और बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ अस्तूर का तजर्बा पहला हुआ है, तजर्बा कहें या टेक्निक कहें उसे, वो आग के दरिया में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इंतज़ार हुसैन की जो शुरू की कहानियाँ हैं उसमें हिजरत का जिक्र ज़्यादा है, बाद में ये जैसा आपने कहा ना कछुए वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मेरे ख्याल में 80 या 75 के बाद आए हैं उनके जो मजमू आए हैं। अब देखिए, जैसे आग का दरिया में, जिसे हम बहुत ही शायद सबसे बड़ा नावल मानते हैं, गौतम नीलंबर, हरिशंकर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन और चंपा, ये बार बार नए नए जन्म लेते हैं। तनासुख का फ़लसफ़ा जो हिंदुस्तान का रीबर्थ का फ़लसफ़ा है वो यहाँ नज़र आता है। फिर जिस तरह से वो ज़िक्र करते हैं

0: खासतौर पे शुरू का जो हिस्सा है आग का दरिया का, उसमें जो बुद्धिज्म जिस तरह से हिंदुस्तान में फैल रहा है और जिस तरह से संघ बन रहे
1: बिल्कुल
0: हैं
1: सही बात है आपकी।
0: और जिस तरह से एक तालिब इल्मों के गिरोह हैं, जौक दर जौक नौजवान जो हैं तपस्या कर रहे हैं और फलसफे पे डिस्कशन कर रहे हैं लंबे लंबे, और दूसरी तरफ एक आम समाज है जिसमें नेचर की मोहब्बत, फितरत, पेड़,
1: लेकिन
0: दरिया।
1: फरीद हुसैन हैदर ने जो है तारीख़ एतबार से देखने की कोशिश की है बुद्ध फलसफे को और उसको उस्तूर के मुकाबले में। ज़ाहिर है उस्तूर कायम होता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं गौतम नीलंबर कई मरतबा जन्म लेता है, तो वो कह जरूरी नहीं कि उसका रिबर्थ है, क्योंकि नॉवल जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो वो लगता है कि वो तारीखी
2: स्टेज
1: शख्सियत से
2: वाइज है
1: वो,
2: वो,
1: हाँ वो बदल रहा है।
0: हाँ वो
1: के
0: फेज
1: आमतौर
0: लेके
1: से
0: चल,
1: हम
0: तारीख
1: उस्तूर
0: का
1: ये
0: शगुन उनका
1: कहते
0: बहुत
1: हैं कि
0: ज्यादा
1: कोई
0: है।
1: हैरत अंगेज़ चीज़ तो होती है ना,
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही
1: मावफ़ुक
0: है,
1: फितरत से बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो सिर्फ कुरातुल हैदर और लोगों ने भी बहुत,
0: हाँ
1: कुरातुल
0: बहुत सही
1: हैदर
0: है।
1: से पहले ये थी मुमताज़ शीरी,
0: मुमताज शीरीन ने भी कुछ
1: मुमताज़
0: तजुर्बे इस
1: शीरी
0: तरह
1: में तो
0: किए हैं।
1: बहुत, मुमताज़ शीरी ने जो के जो दो मुख्तसर अफसाने हैं
0: अच्छा
1: जो थ्री डायमेंशनल तकनीक में लिखे गए हैं, एक
0: अच्छा
1: तो मेघमाला है जिसमें 7-8 हिस्से हैं, उसमें एक नीलकमल है, दूसरा सरस्वती है, तो एक में शिव जी का और एक में पार्वती जी का बहुत ही अच्छा ये किया गया है। और ऐसे ही एक आर्फ्यूस यूरिडेस है, तो उसमें यूनानी मैथोलॉजी के तकरीबन 48 किरदार को सिर्फ एक अफसाने
0: अच्छा
1: में उन्होंने
0: अच्छा
1: इंट्रोड्यूस किया है।
0: अच्छा मुझे एक वहाँ अजीज अहमद वाला अफसाना जो बहुत कम डिस्कस हुआ, मदन
1: मदन
0: सेना
1: सेना
0: और
1: और
0: सदियाँ,
1: सदियाँ,
0: हाँ
1: जी,
0: वो भी इसी तरह से है, वो भी सारी माइथोलॉजी को लेके और बार बार बहुत लंबे पीरियड को लेके साथ साथ चलते, जाहिर है कि
1: जी।
0: उनका भी तारीखी शऊर बहुत
2: हरके
0: डेवलप
2: सर
0: था।
2: सब इन तमाम बातों के दरमियान एक बात जो समझ में आती है वो ये होती है कि इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं उनमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का एक सिलसिला बना रहता है।
0: तनासुब का जो फलसफा है
2: हाँ हाँ आवागमन का उसका, और बदला जैसे
0: जी,
2: आखिरी आदमी है निज़ार हुसैन की, उसमें वो लास्ट में बंदर बन जाता है, मतलब वो अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर होती रहती है वो उसी तरह से चलती है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को चाहता है कि हम बंदर बन जाएं और तमाम चीज़ों से पीछा हमारा छूट जाए। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मेरे ख्याल में क्या लाजमी जुज है इस तरह की उस्तूरी कहानियों का, ऐसा लगता है कुछ
0: वो
2: आपको?
0: भी उस्तूर का हिस्सा है, वही लाजमी जुज तो नहीं है, उसके बगैर भी हमारे यहाँ ऐसा फिक्शन क्रिएट हुआ है जहाँ तनासुख का पहलू
1: जी
0: नहीं है लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरह से उतरी हुई हैं असातीर में।
1: मैं एक बात कहना चाह रहा था कि असातूर और जातक कथाओं वगैरह को इंतज़ार हुसैन ने बहुत चाबुकदस्ती से इस्तेमाल किया है, ज़बान खूबसूरत है, कोई भी बड़ी तहरीर जो है वो ज़बान के बगैर तो बनती नहीं है, सच तो
2: बिल्कुल
0: यह है।
2: हाँ जी,
0: कुरतुला हैदर की ज़बान किस कदर खूबसूरत है।
2: दरअसल इंतज़ार हुसैन और कुरतुलैन हैदर दोनों के यहाँ उस्तूर और असातिर पाए जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कुरतुलैन हैदर के यहाँ मारूजी हकीकत का पहलू गालिब होता है, ये फ़र्क है, और इंतज़ार हुसैन के यहाँ मालूम होता है कि वो फनपारा उस उस्तूर के बतन से निकल रहा है। तो उनकी गालिब शनाख्त, अगर हम किसी एक हमारे फनकार को तलाश करना चाहें जिसकी गालिब शनाख्त असातीर हो, तो वो इंतज़ार हुसैन और इंतज़ार हुसैन है। दूसरों के यहाँ है लेकिन वो बात कि उसके बतन से निकल रहा वो फनपारा, और चूंकि उसके बतन से फनपारा निकल रहा है उनकी जबान में भी वो रचाव पाया जाता है। वो रचाव है जो उन सदियों के ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपनी विजडम में जब्त तहरीर में ला रहा, उस उस्तूर के पूरे प्रोसेस को वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और जब वो जज्ब हो जाता है तो वो किस शक्ल में बाहर निकलेगा ये वो खुद नहीं जानते, लेकिन जब वो निकलता है तो मालूम है कि वो तमाम उसका तना, उसकी शाखें, उसकी पत्तियां और उसकी कोंपलें बस वही हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए वो उन्होंने जो इस्लामी उस्तूर लिखे हैं तो उनकी ज़बान, उसका लहजा, डिक्शन बिल्कुल वैसा ही रखा है।
2: जी
1: जो हिंदू असातिर है तो उसमें हिंदी के अल्फाज बहुत सारे आए हैं, हिंदी
0: जी
1: तर्ज़
0: बहुत है,
1: तहरीर
0: हिंदी के
1: है उस
0: संस्कृत के
1: तरीके
0: अल्फाज
1: से,
0: भी जी
1: संस्कृत के
0: जी
1: बहुत आए हैं। वैसे जो बुद्धिस्ट असातिर उन्होंने लिए हैं तो उसमें बिल्कुल वही तथागत वाला तरीका
0: हाँ तथागत
1: इस्तेमाल किया
0: बुद्धिस्ट
1: कि
0: तो
1: किस
0: बार
1: तरीके
0: बार
1: से
0: आ, नहीं
1: कहानियाँ
0: बुद्ध
1: सुना रहे
0: बुद्ध
1: हैं।
0: के बुद्ध
1: जी
0: वाला
1: जी
0: है,
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: बुद्धिस्ट पीरियड के।
1: तो उनका तर्ज उसलूब हर उस्तूर के साथ बदलता जाता है, तो ये बड़ी खूबी है उनकी।
0: मेरे जहन में एक बात आती थी कि इंतज़ार हुसैन पाकिस्तान में बैठ के लिख रहे थे और कुरतुलन हैदर पाकिस्तान से कुछ परेशान होकर वापस आ गई थी, तो क्या जो मकामी हालात होते हैं, मकामी समाजियात होती है,
2: असरअंदाज
0: क्या
2: होते हैं,
0: उसका असर भी तहरीरों पर पड़ता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल होता है ना कि वहाँ की तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, और ये जो सिचुएशन अलग अलग है,
3: لکھتے وقت ڈراتی.

0: है।
1: क्या ये हो सकता है कि इंजार हुसैन जानबूझ के इतना वाजे और इतना कंक्रीट नहीं लिखते हैं, टेक्निक उनकी ऐसी है, जितना कुरुतुन हैदर हमारे यहाँ बाद के जो नावल है उनका, चांदनी बेगम वगैरह, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का पोलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है वो, और लगता है किसी तरह के पसंद का लिखा हुआ नावल है ये, तो इसका शायद असर पड़ता है।
0: मैं अर्ज करूं अगर आप इजाज़त दें,
1: जी जनाब,
0: इंतज़ार हुसैन के यहाँ ये जो फ़न का तख्लीक का अमल है ये ओढ़ा हुआ नहीं है।
1: बड़े
0: अगर
1: फनकार हैं।
0: ओढ़ा हुआ अगर होता खुदा न खास्ता तो फिर वो बात पैदा होती कि भाई खारिज की हालात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं और मसलहत क्या कहती है और रास्त गुफ्तारी हम नहीं कर सकते तो चलिए इसकी आड़ ले लेते हैं। ये भी कोई इसमें खराबी नहीं है, ऐसा हुआ है वहां भी। भाई अनवर सज्जाद ने यही तो किया, हमें लगता है कि अनवर सज्जाद ने बहुत ही शौरी तौर पर किया है।
1: कौपल में जैसे है,
0: इंतजार हुसैन का इनफराद ये है कि वो उनके यहाँ चीजें ओढ़ी हुई नहीं है, जैसा मैं अर्ज किया कि वो बातिन में जज्ब कर चुके और फिर वो खुशबू बन के फूट रहा है।
2: इनके अलावा हमारे यहाँ और भी हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं, उस्तूरी कहानियां लिखी हैं। मसलन सुरेंद्र प्रकाश जो है, इन्होंने कई अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं,
1: बजुका
2: खासतौर
1: उसमें
2: से
1: खास है।
2: बाज़गोई की है।
1: हाँ,
2: तो
1: बाज़गोई
2: बाज़गोई को जिस तरह से इमरजेंसी पे उसका इंतखबाक किया और उसको पिछले ज़माने में ले गए
1: दास्तान से
2: हैं,
1: जुड़ा है
2: बल्कि
1: उसको।
2: शहरोज़ी के हवाले से ये
1: हाँ
2: किया है, वो तो बेहद अच्छी कहानी है। लगेगा कि आप पिछली दुनिया में पहुंच गए हैं। या खालिद अशरफ साहब कुर्रतुल्लैन हैदर का जो जिक्र कर रहे हैं, तो उनका एक अफसाना भी है जिसमें बज़ाहिर वो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन उसमें उस्तूर है। उस्तूर इस तरीके से है, रोशनी की रफ्तार जो
1: रोशनी की
2: उनका
1: रफ्तार। हाँ,
2: अफसाना है,
1: रोशनी की
2: रोशनी की
1: रफ्तार
2: रफ्तार,
1: पर।
2: तो वो
1: हाँ,
2: कदीम मिस्र में पहुंच जाता है वो,
1: टाइम मशीन में बैठ
2: और
1: के।
2: फिर वहाँ उस उस्तूर को बयान किया जो मिस्री उस्तूर है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्तूर के हवाले से चार पांच मुल्क हैं जो बेहद सर्वतमंद है। एक तो यूनान है, रोम है, खुद हमारा हिंदुस्तान है और जापान है। वैसे तो बहुत हर
1: मिस्र,
2: मुल्क का, हर कौम का, हर तहजीब का अलग अलग वो होता है, और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अरविंद डिगा ने जो उनका जो नावल था द वाइट टाइगर, तो इसकी इब्तदा यहाँ से करते हैं कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि किताब शुरू करने से पहले भगवान की अर्चना करते हैं। तो मेरे सामने कई मतबादिल हैं, एक मुसलमानों का खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर एक ईसाइयों के तीन खुदा हैं जिसकी अर्चना करें, या फिर हिंदुओं के 3,65,00,000 हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि हर भगवान से कोई ना कोई स्तूर जुड़ा हुआ है, तो इस एतबार से देखें तो यूनान और रोम से ज़्यादा पावरफुल जो है और ज़्यादा सर्वतमंद
1: हाँ,
2: हमारा
1: मेथोलॉजी
2: हिंदुस्तानी असाती है,
1: मेथोलॉजी
2: बहुत ज़्यादा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो ज़्यादा फैला हुआ है,
2: जी
1: ज़्यादा वसी है, तो वो कहीं बेहतर है। ये तो हिंदुस्तान का हमारा जो माशरा है और सब कुछ बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है।
2: सुरेंद्र
1: एक साहब,
2: प्रकाश,
1: नंद किशोर विक्रम साहब ने भी एक नावल लिखा था जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, 19वां अध्याय।
2: हाँ
1: वो
2: हाँ
1: महाभारत के बैकग्राउंड में पार्टीशन से, चूंकि पार्टीशन को उन्होंने बहुत देखा था और पार्टीशन में सफ़र भी किया था उन्होंने, वो भी एक अच्छा नावल है। फिर इनका हुसैन उलग साहब का एक नावल आया अमावस में ख्वाब, उसमें जो मरकजी किरदार है इस्माइल, वो कोहकाफ के पार भी देखता है। इसी तरह बानो कुदसिया का नावल राजा गिद्ध।
0: खालिद अशरफ साहब बताएं कि ये जो हिंदुस्तान में इंतज़ार हुसैन के बाद जो उस्तूर का एक सिलसिला चला जिसका अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे, क्या ये इंतज़ार हुसैन का इफेक्ट है या ये एक फितरी बहाव के तहत ही आया है?
2: नहीं, हमारे यहाँ ये लोग लिख रहे थे ना, बेदी लिख रहे थे, ग्रहण है, लाजवंती में उस्तूर है, अपने दुख मुझे दे दो में है, हिंदू
1: देखिए,
2: वगैरह का जो
1: अस्तूर
2: चांद का है।
1: अब्बास साहब,
2: या फिर
1: अस्तूर
2: एक खाली साहब, एक बहुत अच्छा अफसाना है मुझे याद आ गया अभी, जो गिंदरपाल साहब का इफरीत,
1: इफरीत,
2: उसमें
1: इफरीत,
2: रावण का उस्तूर
1: हाँ, रावण का है।
2: है ना, दहली का की कहानी है कि रामलीला खेला जा रहा है और किस तरह उसमें रावण
1: हाँ,
2: को
1: वो बीवी
2: दहशतगर्दी से
1: बीवी जो
2: जोड़ने
1: है,
2: की कोशिश की है।
1: हाँ, वो बच्चा कहता है कि माता जी को साथ क्यों नहीं लाए रामलीला देखने लिए, कहते हैं उन्होंने तो रावण ऑलरेडी बहुत देखे हुए हैं। वो है अफसाना, बिल्कुल जदीद, उससे जुड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें कि कुरतुलन हैदर और इंतज़ार हुसैन के बाद उर्दू में जो माइथोलॉजी जिसे कहते हैं अस्तूर, मेन स्ट्रीम में नहीं आई।
0: आप इजाज़त दें तो मैं ये अर्ज करूं, अभी इफरीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे नज़दीक इफरीत जो है वो कंट्राइव फन पा रहा है, उस तरह से उसकी जो एक नामियाती वजूद होना चाहिए फन पारे का, वो इफरीत में नहीं मिलता। यहाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जबकि हमारे जोगिंदरपाल साहब बहुत बड़े फनकार हैं और बड़ी अजीब चीज़ें लिखी, लेकिन इफरीत में ज़रा सा वो बात बन नहीं पा
2: हाँ,
0: रही है।
2: मतलब वो उसको इस तरीके
0: ये
2: से,
0: भी सोचे समझे ढंग से आप उसको 2+2=4 की तरह इफरीत को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: एक अफसाना उनका बहुत अच्छा ग्रंथी भी है जिसमें उन्होंने सिख جو موٹیوس ہیں اور سکھ جو

0: सिंबल्स हैं उनको भी बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है
1: जी हाँ जी हाँ
0: जोगिंदरपाल साहब, जाहिर है कि बड़े
1: नहीं, ये
0: राइटर
1: जो
0: थे हमारे।
1: गुफ्तगू हो रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा उस्तूरी अफसाने नहीं लिखे गए, मुझे लगता है कि काफ़ी लिखे गए हैं। तो खुद सलाम बिन रज़ाक की देख लें, अभी कितने
0: जिक्र
1: अफसाने हैं, उसका
0: आया,
1: जिक्र आया आप
0: अभी
1: लोगों ने
0: जिक्र
1: किया।
0: आया।
1: मुमताज़ शीरी के 5-6 अफसाने हैं, सरस्वती जी पे हैं, शिव जी पे हैं, बुद्धिस्ट पे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जोगिंदरपाल हैं ये लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखेंगे, सुंद प्रकाश है इनके यहाँ उस्तूरी
0: लेकिन
1: अफसाने मिल
0: सुंदर
1: जाते
0: प्रकाश का
1: हैं।
0: वनवास 81,
1: जी
0: वनवास 81 में वो राम का ही वनवास है और आज के जो सूरत हाल है उस पर उसका इंतबाह हो रहा है। राम तो आ गए थे वनवास के बाद लौट कर यहाँ, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ राम लौट कर नहीं
1: नारायण जी
0: आते।
1: बिल्कुल
0: और राम राज्य की जो एक मिसाली मुमलेकत का तस्वुर है वो उसी वक्त हकीकत बन सकता है जब राम लौट आते। राम नहीं आ रहे हैं तो वो मिसाली तस्वुर उसके बरक्स जितनी खराबियां हो सकती हैं वो इस कदर हैं कि राम न आना बेहतर समझते हैं।
1: बिल्कुल इसी इसी मौजू पे श्री रामचंद्र जी को ही उस्तूर बना करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने एक अफसाना लिखा। अफसाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यही यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन फिजा देकर के वो बहुत घबराते हैं।
0: अच्छा जी ना बड़े साहब, एक चीज और है, ये जो आजकल मैजिक रियलिज्म बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ और लेटिन अमेरिका से आई थी 70s में ये टेक्निक, क्या ये कुछ मैजिक रियलिज्म और माइथोलॉजी क्या इनमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ मुश्तरका है? जैसे
1: देखिए
0: मुझे
1: ये
0: लगता है
1: मैजिक
0: कि
1: रियलिज्म उस तख्लीकी रिवायत से जुड़ी हुई है जिसे हम उस्तूर साजी का अमल कहते हैं।
0: जी
1: यहाँ उस्तूर साजी हो रही है लेकिन आज के सियाक में हो रही है, अपनी जात के सियाक में हो रही है और इस बस यही अमल है वहाँ जो दूसरी सियाक में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं,
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे
1: वाकयात और
0: क्रिश्चियन
1: किरदार
0: माइथोलॉजी
1: जो
0: का
1: है
0: उसमें
1: वो
0: काफी
1: बिल्कुल
0: जी
1: उस्तूर
0: हमने
1: जैसे ही
0: देखा।
1: है, मुहय्यरुल उकूल है, नाकाबिले
0: जी
1: यकीन है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: माफोकुल फितरत है।
0: जी जी
1: और
0: ख्वाब उसके
1: मैजिक रियलिज्म में भी
0: ख्वाब है,
1: तकरीबन,
0: मिथ्स
1: हालांकि वो
0: हैं।
1: तो टेक्निक अलग है,
0: जी
1: मैजिक
0: अब
1: रियलिज्म
0: देखिए
1: हो या
0: हमारा एक
1: सरियलिज्म हो।
0: अब्जर्ड आर्ट का एक पूरा दबिस्तान रहा, जी
1: चाहे वो अब्जर्ड ड्रामा हो चाहे अब्जर्ड फिक्शन हो। तो ये अब्जर्ड फिक्शन बाज़ा कभी कभार तो हमें परेशान यूँ करता है कि जो हमारी असातीर पर मबनी फन पारे हैं आम कारी के लिए वो अब्जर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि गिलगामिश क्या चीज़ है।
0: जी
1: हाँ, तो यानी जब कोई उस्तूर इस्तियारा बन जाता है और कारी उससे वाकिफ नहीं है तो उसके लिए तो वो वही अब्जर्ड है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये देखें कि हिंदुस्तानी असाथी उर्दू फिक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, उस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की, और ये सामने आया कि इंतज़ार हुसैन ने तकरीबन 12-14 कहानियाँ लिखी सवाली से, मुमताज़ शीरी ने 5-6 कहानियाँ लिखी, सुरेंद्र प्रकाश
0: आगे
1: की
0: सुनो
1: हैं,
0: आगे
1: राजेंद्र सिंह बेदी
0: सुनो
1: के अफसाने हैं बहुत से उस्तूर के हवाले से, जोगिंदर पाल के अफसाने हैं,
0: सीताहरण।
1: सैयद मोहम्मद अशरफ के हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जगह मिली है हिंदुस्तानी असातीर को उर्दू फिक्शन में, और इस एतबार से हम कह सकते हैं कि हमारा उर्दू फिक्शन बेहद सर्वतमंद है उस्तूर को बयान करने के एतबार से। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू तो जारी रह सकती है, लेकिन हम यहाँ ख़त्म कर दें तो
0: वक्त की अपनी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बेहद शुक्रिया तमाम।
0: बहुत शुक्रिया।
2: आमीन। अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजूद था उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। मुबाहिसे में शुरका थे जनाब मुइनुद्दीन दीना बड़े, जनाब खालिद अशरफ, जनाब असरार गांधी। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब अबू बकर आबाद। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपनी मेजबान नसरीन बेगम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।

读这里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。

印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

首听 Sukhvinder Ho 山可 Mahadevan 唱的一首歌曲。

0: Aina.
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
2: अमीषा पटेल।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। और अमीषा, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम रुख करेंगे जापान का। जब वहाँ क्या हो रहा है अमीषा?
2: वहाँ पे हो रहे हैं 2026 के एशियन गेम्स, जहाँ हमें काफी सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हमारे भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: जी हाँ, और आज हम ढेर सारी खबरों के साथ आए हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, स्क्वैश, सेलिंग, शूटिंग, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, ऐसी कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे और साथ ही नजर रहेगी 2 अक्टूबर को होने वाली कुछ अहम स्पर्धाओं पर। क्रिकेट में बात होगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे की। इसके अलावा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की पुरुष और महिला टीमों के मुकाबले का भी ताजा हाल आपको बताया जाएगा। साथ ही भारत अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के यूथ टेस्ट का अपडेट और टेबल टेनिस के चाइना स्मैश में जुड़ी अहम खबरें भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। अमीषा, मेरा तो सांस फूल गया और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इन सभी खबरों का।
2: जी बिल्कुल अनु, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन गेम्स की, जहां हमारे हाथ लगे हैं मेडल्स और कुछ निराशाएं भी साथ में हाथ लगी हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि एशियन गेम्स में क्या क्या हुआ है। तो अब अपने श्रोताओं को सुनाते हैं यह खास रिपोर्ट।
1: तो अब बात करते हैं एशियन गेम्स से आ रही सबसे बड़ी खबर, कुश्ती से, जहां भारत के नितेश सिवाच ने मेंस ग्रेको रोमन 97 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार

0: प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बेड़दी को 7-1 से हराया। भारतीय पहलवान ने पहले पीरियड में ही मुकाबले पर मजबूत पकड़ बनाते हुए 7-0 की बढ़त हासिल कर ली और अंततः मुकाबला 7-1 से अपने नाम किया। इसके बाद सेमीफाइनल में नितेश मंगोलिया के गानखुयाक के खिलाफ और भी दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शुरुआत में 1-1 हासिल किया और फिर 2 शानदार 4-पॉइंट थ्रोज लगाते हुए पहले ही पीरियड में 9-0 की बढ़त बना ली। मुकाबला टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर यहीं समाप्त हो गया और नितेश ने गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना ली। फाइनल में नितेश का सामना मेजबान जापान के यूरी नाकाजातो से हुआ। भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश की, लेकिन निर्णायक मुकाबले में नाकाजातो ने जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और नितेश सिवाच को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। श्रोताओं, स्वर्ण पदक हाथ से निकल गया, लेकिन नितेश का ये रजत पदक भी भारतीय ग्रीको रोमन रेसलिंग के लिए बेहद खास उपलब्धि है। वो 1962 के बाद एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन रेसलिंग के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने, यानी उन्होंने भारत का 64 साल का इंतजार समाप्त किया। इससे पहले 1962 के एशियन गेम्स में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने पदक हासिल कर भारत को गौरवान्वित किया था। अब रुख करते हैं सेपेक ट्रॉफी और, जहां भारतीय पुरुष टीम ने मेंस स्क्वाड्रेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली और इसके साथ ही भारत का एक पदक भी सुनिश्चित हो गया है। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ जीत के साथ की। भारतीय टीम ने मुकाबले पर शुरू से नियंत्रण बनाए रखा और सीधे 2 सेटों में 2-0 से जीत दर्ज की। पहला सेट भारत ने 15-9 और दूसरा 15-8 से अपने नाम किया। इसके बाद आज भारत का सामना वियतनाम से हुआ। पहला सेट काफी करीबी रहा, लेकिन निर्णायक मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाते हुए इसे 15-12 से जीत लिया। दूसरे सेट में भारत का दबदबा और बढ़ा और उसने 15-9 से जीत दर्ज करके मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में भारत के सामने म्यांमार की चुनौती थी। म्यांमार ने पहला सेट 15-10 से जीतकर भारत को दबाव में डाल दिया, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। बेहद रोमांचक दूसरे सेट को भारत ने 15-13 से जीतकर मुकाबला बराबर किया और फिर निर्णायक तीसरे सेट में पूरी तरह हावी रहते हुए 15-7 से जीत दर्ज की। इस तरह भारत ने म्यांमार को 2-1 से हराया। सेट स्कोर रहा 10-15, 15-13 और 15-7। इस शानदार कमबैक विक्ट्री के साथ भारतीय टीम ने ग्रुप ए में अपना अभियान अपराजित रहते हुए शीर्ष स्थान पर समाप्त किया और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के साथ कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया।
1: अब बात करें आर्चरी यानी तीरंदाजी की, तो आज तीरंदाजी के व्यक्तिगत नॉकआउट और मेडल मुकाबले खेले गए, जिसके बाद कुछ इस तरह रहा भारत का प्रदर्शन। पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ 144 के मुकाबले 148 अंकों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में गणेश ने वियतनाम के खिलाड़ी कांग डुक को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराकर पदक अपने नाम किया। इसके बाद महिला व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो भारत की चिकिता तनिपार्थी महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान से 143 के मुकाबले 144 अंकों के बेहद करीबी अंतर से हार गईं।
0: तो अमीषा, बात करते हैं कुश्ती की, जहां विमेंस फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में भारत की मानसी अहलावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और अब उनकी नजर कांस्य पदक पर है। मानसी ने अपने अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान की इरीना के खिलाफ की। पहला पीरियड काफी करीबी रहा और मानसी ने 1-0 की मामूली बढ़त बनाई। दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने आक्रामक रूप अपनाया और 5 अंक और जुटाते हुए मुकाबला 6-1 से अपने नाम किया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में मानसी का सामना साउथ कोरिया की जो सुबीन से हुआ। यहां भारतीय पहलवान और भी प्रभावशाली नजर आई। मानसी ने शुरुआत से मुकाबले पर नियंत्रण बनाया और 5-0 की बढ़त हासिल करने के बाद अपनी कोरियन प्रतिद्वंदी को पिन कर विक्ट्री बाय फॉल के जरिए मुकाबला समाप्त कर दिया। इस शानदार जीत ने उन्हें विमेंस 62 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में मानसी के सामने कड़ी चुनौती थी। उनका मुकाबला जापान की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से हुआ। जापानीज पहलवान ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मुकाबले पर नियंत्रण रखा और मानसी को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में हार के बाद मानसी की पदक की उम्मीद बरकरार है। अब वो ब्रॉन्ज मेडल बाउट में उतरेंगी और उनके पास अपने शानदार अभियान को एशियन गेम्स के पदक के साथ समाप्त करने का मौका होगा।
1: जी बिल्कुल, और एक मौका बनाया है हमारे सेलर्स ने, जहां मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पुरुषों के स्किफ 49 ER इवेंट में देश को रजत पदक दिलाया है। इस जोड़ी ने चीनी चुनौती को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहकर पोडियम पर तिरंगा लहराया। इसके साथ ही भारत की नजरें अब पुरुषों के आई

0: ES7 मेंस डिंगी इवेंट पर टिकी हुई हैं, जहां स्टार नाविक विष्णु सर्वनन आज दमदार खेल दिखाते हुए पदक की रेस में मजबूती से बने हुए हैं। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स खेल चुके विष्णु 3 अक्टूबर को होने वाली अंतिम रेस में अपने पिछले कांस्य पदक का रंग बदलने के इरादे से पानी में उतरेंगे। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा की जोड़ी पदक के बेहद करीब पहुंचकर चौथे स्थान पर रही।
1: तो श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं जूडो की, जहां विमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की यामिनी मौर्या ने अपनी शुरुआती मुकाबले में कतर की फतेन बू काहूस को हराकर शानदार शुरुआत। यामिनी ने मुकाबले में शुरू से दबदबा बनाया और अपनी कतरी प्रतिद्वंदी को इपॉन से हराया। जूडो में इपॉन सबसे बड़ा और निर्णायक स्कोर होता है और इपॉन मिलते ही मुकाबला समाप्त हो जाता है। इस जीत के साथ यामिनी क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जहां उनका सामना मंगोलिया की आरियून जाया से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन मंगोलियन जुडोका ने यूको के अंतर से जीत हासिल करी। यूको जुडो में छोटा स्कोरिंग एडवांटेज है, जो करीबी मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद यामिनी को रेपाचेज के जरिए पदक की दौड़ में बने रहने का मौका मिला। रेपाचेज में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला जीता और ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह बना ली। लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में यामिनी को उज्बेकिस्तान की शुकुरजोन अमीनोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमीनोवा ने इपॉन के जरिए मुकाबला जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि यामिनी बेहद करीब पहुंचने के बावजूद पदक से चूक गई।
0: जी पर नहीं चूके हैं भारतीय शूटर अनीश पानवाला, जिन्होंने 2026 एशियाई खेलों की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 7वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। अनीश क्वालिफिकेशन राउंड में 9वें स्थान पर रहे थे, क्योंकि प्रति देश केवल 2 निशानेबाजों के सेमीफाइनल में जाने के नियम है। इसके कारण उन्हें फाइनल टॉप 8 में जगह बनाने का मौका मिला। फाइनल के एलिमिनेशन स्टेज में उन्होंने 15 में से 11 हिट लगाए। उस चरण में उनका स्कोर संयुक्त रूप से तीसरा सबसे अच्छा रहा था, लेकिन क्वालिफिकेशन स्कोर कम होने के कारण टाई ब्रेकर नियम के तहत वे 7वें स्थान पर आ गए। इस स्पर्धा के समापन के साथ ही भारतीय शूटिंग टीम ने इन खेलों में अपने अभियान को कुल 15 पदकों यानी 3 स्वर्ण 8 रजत और 4 कांस्य के साथ समाप्त किया। जी तो इसके साथ ही खत्म हुआ है सफर श्रीलंका का फाइनल तक का। खबर है क्रिकेट पिच से, जहां भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां अब गोल्ड मेडल के लिए भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने 46 बॉल्स में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से अनबीटन 80 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, जबकि ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 21 बॉल्स में 38 रन जोड़े। मैदान की स्लो पिच के बारे में क्या कहते हैं ईशान किशन, आइए सुनते हैं।
2: क्रिकेट इज ऑल अबाउट यू नो यू गेट आउट इन वन गुड बॉल एंड इट जस्ट चेंजेस द होल सिनेरियो ऑफ द गेम, सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, व्हाट द पिच इज गोइंग टू डू, व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, व्हाट द टीम रिक्वायर्स। सो स्पेशली ऑन दीस विकेट्स आई फील इट्स मोर अबाउट your team goals other than your individual goals, so we just focus on those little things.
0: Pakistan se hone wale final par kya kehte hain Ishan Kishan, aaiye sunte hain.
2: I think just keeping it simple, you know, you don't think so much. We played today, we know the conditions are not going to be so easy, especially they are also spinner friendly team. At the same time, you know, you just don't think like what's going to happen after 2 days. You just keep calm, you play your shots, you be in the moment and just enjoy those crunch moments.
0: बाद ही जवाब में भारत ने 170 रन का टारगेट चेज करने उतरी श्रीलंका की टीम को मात्र 9.5 ओवर्स में 45 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें जो नवनिदु फर्नांडो है उन्होंने 15 रन बनाकर वह श्रीलंका के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे, जबकि 5 बैटर्स 0 पर आउट हुए। इंडिया की जो जीत है उसमें योगदान रहा जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 7 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके साथ ही योगदान रहा अक्षर पटेल का, जिन्होंने 8 रन देकर 2 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा ने भी 2 रन देकर 2 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 18 रन देकर 1 विकेट लिया।
1: जी हाँ, हमेशा काफी उठा पटक चल रही है एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स से ही एक और ताजा खबर आ रही है मानसी अहलावत की तरफ से। मानसी अहलावत कांस्य पदक से चूक गई है। एशियाई खेलों में महिला 62 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में मानसी मंगोलिया से 2-5 से हार गई हैं। एक और हार की खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ग्रीको रोमन 77 किलोग्राम भार वर्ग से भारत के अमन बरोनिया ने अपने शुरुआती मुकाबले में बेहद संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की थी। राउंड ऑफ 16 में अमन का सामना मंगोलिया के बोरगिल से हुआ। दोनों

0: पहलवानों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय पहलवान ने निर्णायक मौकों पर अंक जुटाते हुए 8-6 से जीत हासिल की। मंगोलियन पहलवान ने लगातार दबाव बनाए रखा और मुकाबला अंतिम चरण तक खुला रहा, लेकिन अमन ने 2 अंकों की बढ़त कायम रखते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। हालांकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल में अमन को कतर के एशियन चैंपियन शाहीन के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी से हार का सामना करना पड़ा और बाद में उनका मेडल कैंपेन समाप्त हो गया।
1: जी बिल्कुल अनु, इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीत की भी, जहां स्क्वॉश में 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। आज खेले गए दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में भारतीय पुरुष और महिला टीमों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दोनों को कांस्य पदक मिला और इस पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हांगकांग ने 2-1 से हराया। भारत के लिए केवल तन्वी खन्ना जो है वही अपना मैच जीत सकी, जबकि अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा को अपने मैचों में हार झेलनी पड़ी। वहीं पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में भारत को मलेशिया ने 2-1 से मात दी। इस मुकाबले में वीर चोटरानी ने अपना मैच जीता, लेकिन अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार को हार का सामना करना पड़ा। इसके इन 2 कांस्य पदकों के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारत का स्क्वैश अभियान कुल 4 पदकों यानी 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त हो गया है।

0: जी, तो अब बात करते हैं टेनिस की। एशियन गेम्स में ही, टेनिस में भी हमें निराशाजनक खबर देखने को मिली है कि जो जी
1: क्या क्या निराशाजनक खबर है अमीषा?
0: जी तो जो भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल है, वह पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में चीन के जो खिलाड़ी हैं उनसे सीधे सेटों से हार गए हैं, जिससे एशियाई खेलों में भारत का अभियान बिना किसी पदक के समाप्त हो गया है। ये आपको बता, हम अपने श्रोताओं को बता दें अनु, कि 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एशियाई खेलों में टेनिस में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है।
1: हाँ अमीषा, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन एशियन गेम्स में भारत के लिए मिला जुला रहा। जहाँ कहीं सेलिंग में हमें सिल्वर मिला, साथ ही नितेश भी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी हार का भी सामना करना पड़ा है।
0: जी बिल्कुल। और एक और हम अपने श्रोताओं को खबर बताएंगे एशियन गेम्स की, हॉकी से, कि हॉकी में भी भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से करीबी

0: सदस्यों ने। ये एसएमएस हमें भेजा है चौधरी वास हिसार हरियाणा से भेजने वाले भाई हैं राजू अग्रवाल केशव और परिवार के सभी सदस्य।
1: जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और उनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला है भाई संदीप गुगलानी और जगमोहन सिंह प्रजापति जी का, ये भी हमें फरमाई भेज रहे हैं भाई मॉडल टाउन करनाल से। और ये एसएमएस हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है पायल बहन ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। मेरठ कैंट से फरमाई भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। बेहर वाला खुर्द सिरसा से भी हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं बलवंत जाखड़ और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम पंचायत बड़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और उनका पूरा परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं भाई मुकेश शर्मा और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं अखिलेश कुमार शाहू और उनका पूरा परिवार। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से फरमाई भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से भी हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार।
0: गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश भेजी है सुभाष लोना ओमवती और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। धनौली तेलीवाला से ये फरमाइश भेजी है निसार सलमानी नौशाद सलमानी और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है जमानिया गाजीपुर यूपी से भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल और परिवार के सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाने की आवाज में ये रागनी।

0: किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। बहुत ही सुंदर रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी, ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती की आवाज में भाई हरिश्चंद तारावती के किस्से की।
1: बिल्कुल, और भाई मनोरंजन तो हम कराते कराते हैं अतुल भाई, साथ ही साथ कुछ जानकारी भी अपने बहन भाइयों को हम देते हैं कार्यक्रम के बीच बीच में। ऐसी ही एक जानकारी लेकर आए हैं हम मिशन लाइफ के बारे में, जो कि आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है उसके मिशन को लाइफ मिशन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक भारत नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और समुदाय को प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट का मुकाबला किया जा सके।
0: बिल्कुल, और देखिए इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान इसका विचार रखा था। इसे औपचारिक रूप से जो पायल बहन जो वो मिला है वो 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश की उपस्थिति में जो इसे लॉन्च किया गया। और इसका लक्ष्य यही है कि इसका ध्येय प्रो प्लेनेट पीपल की अवधारणा को बढ़ा देना है, यानी ऐसे लोग जो पर्यावरण की रक्षा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं।
1: और भाई इसका मूल मंत्र जो है वो है सचेत और जानबूझकर उपयोग, ना कि विनाशकारी उपभोग। और यह अभियान मुख्य रूप से 7 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: ऊर्जा की बचत, बल्बों का उपयोग, एलईडी बल्बों का उपयोग, स्टार रेटेड उपकरण और सार्वजनिक परिवहन या पैदल साइकिल का प्रयोग, पानी की बचत, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के रिसाव को रोकना और ड्रिप सिंचाई अपनाना।
0: बिल्कुल, और देखिए एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहना, यानी कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं और बोतलों की जगह कपड़े के थैले, स्टील की बोतलें और कुल्हड़ का उपयोग करना। सतत खाद्य प्रणालियां जैसे कि स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों, मोटे अनाजों को अपनाना और भोजन की बर्बादी को रोकना। अपशिष्ट कचरा कम करना, यानी कि स्रोत पर ही कचरे का अलगाव और कंपोस्टिंग करना। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कम करना, यानी कि गैजेट्स का लंबे समय तक उपयोग, इनकी मरम्मत और उचित पुनर्चक्रण, जीवन स्वस्थ जीवन शैली यानी कि योग, पैदल चलना और पर्यावरण के अनुकूल आदतें विकसित करना है।
1: बिल्कुल, और भाई ये जो मिशन लाइफ के 3 चरण हैं, मांग में परिवर्तन जो पहला चरण है, दैनिक जीवन में छोटे और पर्यावरण अनुकूल बदलावों को अपनाना, आपूर्ति में परिवर्तन, जब लोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को बढ़ाएंगे तो अतुल भाई बाजार और उद्योग स्वतः ही उसके अनुसार स्थायी उत्पादों की आपूर्ति करेंगे। नीति में परिवर्तन, ये चरण 3 है, दीर्घकाल में सरकारी और औद्योगिक नीतियों में ऐसा बदलाव लाना जो सतत विकास का समर्थन करे।
0: बिल्कुल, तो ये तो रही भाई जानकारी मिशन लाइफ सेवा संकल्प अभियान के तहत, और SMS भी हमारे काफी श्रोताओं ने भेजे।

0: ऋषि पाल खदाना और पप्पू भारती को ही सुनने के लिए हमारे पास कुछ और एसएमएस भी आ चुके हैं, जो कि जसपुर उत्तराखंड से आया है। एसएमएस भेजने वाले भाई हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार।
1: ये एसएमएस हमारे पास में आया है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश कुमार शाहू और उनके पूरे परिवार की हमें फरमाइश आई थी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाई भेज रहे थे ओम प्रकाश राय और उनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं मिंटो टॉम्स और उनका पूरा परिवार। और पहलवान ये फरमाइश हमें भेजी थी भाई जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले थे मुकेश कश्यप और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी भाई चंडीगढ़ से भेजने वाले थे सतीश सनेजा और इनका पूरा परिवार।
0: जनकपुर सहारनपुर से फरमाइश भेजी थी जॉन डिकेस्ट्रो और इनके पूरे परिवार ने। बक्सर से राज अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और पुराना तालाब डुमराव से वरीउल्लाह अंसारी, इनके पूरे परिवार ने हमें ये एसएमएस भेजा था। दादरी गेट भिवानी से भी एसएमएस आया था किशन मेहरा, कोमल मेहरा और परिवार, इनके पूरे परिवार का।
1: और देखिए ये फरमाइश हमारे पास में आई थी संबलपुर कांकेर से भेजने वाले थे भाई फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। पता जो है भेजा है हमें पलारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे नीतीश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमारे पास में आए थे पायल बहन साहू नगर यवतमाल से भेजने वाले थे राहुल मनवर और इनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला था पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले थे अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई थी दतरंगी भटापारा से भेजने वाले थे हीरामणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस

कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम किसान वाणी लेकर के। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनकी जो कृषि में लागत है वो कम आए और उनको फायदा ज्यादा हो। साथ ही साथ जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानें, उनका वो लाभ लें और जो जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं तो उनका उपयोग वो अपनी कृषि में करें ताकि उनकी जो कृषि है वो उन्नत हो, खर्चा कम हो, लाभ ज्यादा हो।
4: बिल्कुल शशि भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं खाद्य तेल भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है और तिलहन लाखों किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊर्जा विटामिनों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं जो विशेष रूप से वंचित और कुपोषित आबादी की छिपी हुई भूख से लड़ने और कैलोरी में सुधार करने में मदद करते हैं।
3: तिलहन न केवल पोषण सुरक्षा में बल्कि आप किसानों के कल्याण में भी योगदान देकर एक महत्वपूर्ण नगदी फसल के रूप में कार्य

0: करते हैं जो ग्रामीण आय और रोजगार को बनाए रखते हैं।
1: और इस दोहरे महत्व के बावजूद देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग ने घरेलू उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और भारत में खाद्य तेलों के प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
0: खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू मांग और आयात के कारण राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी कि पाम ऑयल मिशन को 2021 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, और साथ ही इस मिशन का उद्देश्य पाम ऑयल से किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाना है, पूंजी निवेश बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
0: बिल्कुल। तो नीलम बहन, ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना पाम ऑयल मिशन के बारे में। अब हमारे वो किसान बहन भाई जिनका जो क्षेत्र है वो शुष्क है, यानी कि वहाँ पर पानी की कमी है और तापमान है वो ज़्यादा है, लेकिन वो बागवानी करना चाहते हैं, फल सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करें, कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करें, और भी बहुत सी बातें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी जिसका विषय है शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अतिरिक्त आयुक्त प्रसार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली, और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती के लिए पानी और अनुकूल जलवायु बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां वर्षा कम हो और सिंचाई के साधन सीमित हो, वहां भी संभावनाओं की कमी नहीं है। जरूरत है ऐसी फसलों और तकनीकों को अपनाने की जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शुष्क क्षेत्र में बागवानी की संभावनाएं। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, इससे क्या आशय है?
3: शुष्क क्षेत्र जैसे अपने राजस्थान है, गुजरात का कुछ भाग है और महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ पर बरसात कम होती हो और जो एक गर्मी का मौसम है इसमें काफी तेज गर्मी पड़ती हो और वहाँ पर विकट परिस्थितियाँ होती हैं और उनमें हर कोई फलदार पौधा या सब्जी हम उगा नहीं सकते, तो उसके लिए विशेषकर जो सूखे को, गर्मी को, तेज हवा को, हीट होती है उसको सहन करने वाली फसलें, फलों की हों, सब्जियों की हों, वहाँ पर उगा सकते हैं। और विशेषकर हमारे कुछ अनुसंधान संस्थान ये हालातों को ध्यान में रखते हुए, यानी एरिड जोन उसको ध्यान में रखते हुए संस्थानों की स्थापना की है। उन्होंने कार्य किया कि इन क्षेत्रों में फलों की, सब्जियों की क्या क्या किस्में उगाई जा सकती हैं, किस तरीके से उगाई जा सकती हैं। एक होता है इरिगेटेड, जहाँ पर बढ़िया सिंचाई की भी व्यवस्था है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर अलग हालात होते हैं, बिना ज्यादा मेहनत के, मशक्कत के आप चीजें 12 महीने कुछ ना कुछ पैदा कर सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन सी राज्य हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाई बहनों को?
3: विशेषकर जैसे राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, हरियाणा का भी काफी बड़ा भाग है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग है और कर्नाटक स्टेट में भी बहुत सारा वो है, तो करीब करीब सभी राज्यों का कुछ ना कुछ एरिया इस तरीके की परिस्थितियों में आता है। और वहाँ के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो एक ही जैसी टेक्नोलॉजी काम आ जाती है, लेकिन विशेषकर राजस्थान में बहुत एरिया है तो उसमें कोई भी पौधा आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको विशेष गुण होने चाहिए कि वो उन परिस्थितियों में अच्छा कर सके। प्राकृतिक रूप से कई ऐसे पौधे हैं जैसे खेजड़ी, आपने नाम सुना होगा,
2: जी।
3: खेजड़ी कल्प वृक्ष माना जाता है शुष्क क्षेत्रों में, प्राकृतिक रूप से बिना कोई पौधे बाग लगाए वो खेतों में किसानों के यहाँ उगता रहा है, उस पर भी कई संस्थानों ने काम किया है काफी, खासकर CIAH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में, और दूसरा एक बड़ा संस्थान है जो इन फसलों पर काम करता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वो सभी फसलों पर काम करता है, मतलब अपनी धान वाली फसलें जो हैं, ग्रेन वाली, बाजरा, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज,
2: जी, जी।
3: उन पर भी काम करता है और फलों का भी वहाँ पर एक डिवीजन है, लेकिन बीकानेर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है

0: वो सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, उनकी किस्मों का कैसे विकास कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियां उगाई जाती हैं उन पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान नहीं हुआ पहले, लेकिन ये संस्थानों ने काफ़ी काम किया, ढेर सारी किस्में निकाली जो वहाँ पर सफलतापूर्वक ये पहले अपने फार्म पर उगाते हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों के फार्म पर भी जाके ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसानों की भागीदारी होती है।
1: तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करें कि कम वर्षा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बागवानी को किस तरह एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है?
0: शुष्क बागवानी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान जाएगा कौन से पौधे वहाँ चल सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी।
0: अब उनमें प्रमुख जो पौधे हैं जैसे बेर, अनार, आंवला, करौंदा, एक और लसोड़ा आता है, गोदा बोलते हैं जिसको, जिसका अचार बनता है, ये हैं। केर प्राकृतिक रूप से होता है। इसके अलावा खजूर की खेती आपने सुना होगा बीकानेर और जैसलमेर साइड में। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी इन फसलों पर काफ़ी काम हुआ है। वहाँ की ढेर सारी किस्में आंवले की भी हैं, इसकी बेल पत्र की भी हैं, अनार भी बहुत अच्छा है। अनार की जो क्वालिटी हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इधर बागान लगाते हैं उसमें आती है, क्यों? उसके लिए रात का जो टेम्परेचर तो चाहिए डाउन, और दिन में खूब लू चलती हो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल का जो कलर है वो एकदम लाल आता है, दूर से ही देख के बंदा आकर्षित हो जाएगा, और बहुत अच्छे जूसी फल। गुजरात में जैसे कच्छ भुज जो एरिया है वो भी ये सब एरिड जोन का ही एक पार्ट है, वहाँ पर भी खजूर की खेती भी होती है और दूसरे अनार, आंवला और ये सब भी उगाते हैं लोग।
1: तो डॉक्टर साहब, पौधों का चयन करते समय किसान को मिट्टी और स्थानीय जलवायु की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: पौधों का चयन करते समय किसानों को सबसे पहले तो किस्मों का, क्योंकि किस्म अगर एक बार गलत लगा दी, मान लो उस क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई नहीं है, तो फिर उसमें आप बाद में कुछ भी करते रहो, ज़्यादा सुधार नहीं होता। जहाँ पर भी हम बागान लगा रहे हैं बेहतर हो उसी के आसपास के जो संस्थान हैं उस राज्य में, या उन्हीं फसलों पर काम करने वाले जो संस्थान हैं उनसे किस्में ली जाएं। बाकायदा संस्थान प्रचार प्रसार करते हैं कि उनके द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, कितना उत्पादन देते हैं, कब उनको लगा सकते हैं। प्रशिक्षण भी किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। तो उन्नत किस्म के जो ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार होते हैं पौधे, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक विधि से, बीज से अगर हम कोई पौधे तैयार करते हैं, फलदार पौधे तैयार हो जाएंगे लेकिन पूरे हूबहू गुण नहीं आएंगे जिस फल का हम बीज लेंगे उसके।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है हमारे जो किसान भाई हैं या युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था पूरे देश में है, ना सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में, सभी देश में। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अभी तो लगभग 800 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं देश भर में, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 संस्थान हैं वो सब प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। 80 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय देश भर में खुले हुए हैं, और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद में किसान के मन में कोई शंका नहीं रहती। प्लांटिंग मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है जो बागवानी वाली फसलें हैं, ये संस्थान पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाएं वाजिब दामों पर।
1: अगर कोई किसान नए बाग लगा रहा है, शुष्क क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूमि की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए उन्हें और किन-किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है?
0: जो हमारा फसल हम लगाते हैं फलों की या बागान लगाते हैं ये कोई एक साल का मुद्दा तो है नहीं,
1: नहीं,
0: तो उनको पूरी प्लानिंग के साथ कृषि वैज्ञानिकों से जो प्रशिक्षण लेते हैं पहले से तय कर लें कौन से पौधे लगाने हैं, उसी हिसाब से खेत को तैयार करके उसमें पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, जिससे वो मशीन जो है फार्म मैकेनाइजेशन उनके माध्यम से दूसरा काम भी कर सकें। और पौधे से पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग पौधों की अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप अनार लगा रहे हैं तो अनार 5 मीटर पर लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेर, बेर को कम से कम 6 मीटर का दूरी रख लो, तो 5 से 8 मीटर के बीच में ज्यादातर इनकी दूरी होती है। आंवला लगाते हैं हम, वो भी काफी फैलते हैं और ऊपर भी ज्यादा बढ़ते हैं वो, तो उनमें भी 6 मीटर से 8 मीटर तक की दूरी किस्मों के आधार पर। और गर्मी के मौसम में जब ऑफ सीजन हो, खेत खाली हो, पूरा जुताई उताई करके पाटा लगा के आप उसमें गड्ढे खोद लें, वो कम से कम 2-2.5 फीट का गहरा और उतना ही चौड़ा गड्ढा खोद लें, थोड़ा तपने दें उसको धूप में, गर्मियों में तो गर्मी काफी तेज रहती है। उसके बाद में जो सड़ी हुई गोबर की खाद और ये थोड़ी सी तले में उसके चिकनी मिट्टी अगर तालाब की डालते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो रेतीली होती है, बालू, तो बालू में आप पानी जब भी पौधे को देंगे लीचिंग से वो चला जाएगा। अगर उसके तले में जो

0: है उसमें आपने चिकनी मिट्टी डाली तो वो काफी समय तक उस पौधे को उपलब्ध होगा, और ऊपर फिर मिट्टी जो हमने खोदी है उसको और उसमें खाद वगैरह मिला के उसको सड़ी हुई होनी चाहिए खाद, नहीं तो दीमक भी काफी कमाल करती है, दीमक शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा आती है।
1: तो डॉक्टर साहब, उस समय क्या कोई खाद के साथ हम दवा भी मिक्स कर सकते हैं उस समय?
0: लगाते हैं दीमक के
1: जी
0: लिए पाउडर भी कई आते हैं वो भी,
1: अच्छा हाँ
0: इसके
1: हाँ
0: अलावा पौधा लगाने के बाद में जब रोप जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आती हैं। अब दूसरी कई दीमक की दवाइयाँ आ गई हैं, उसको घोल के 2-4 ml डाल दो पानी में और नज़र रखें, कभी ये नहीं कि आप महीनों तक देखा ही नहीं और उसमें काफ़ी सारे पौधे मर गए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सूखा और शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों की, जब कम वर्षा की बात आती है तो सिंचाई की भी बात आती है, क्योंकि पौधा चाहे जहाँ भी हो पानी की जरूरत होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे हमें पानी देना है, और कितना देना है, कब कब देना है?
0: खासकर जो सिंचाई की व्यवस्था है, किसान भाई कई तरह की तैयारी करते हैं उसके लिए। उसके लिए एक तो बारिश का जो पानी है उसको बड़ा सजो के रखते हैं इन क्षेत्रों में लोग, डिग्गी बोलते हैं कई जगह, या वाटर हार्वेस्टिंग के जो दूसरे तरीके हैं, खेत में जिधर ढलान है उस तरफ बना देते हैं गड्ढा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसके हिसाब से वो पानी उनमें कलेक्ट हो जाए ना, उसको फिर बूंद बूंद सिंचाई विधि से काम में ले सकते हैं। उसके लिए भी अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, प्रशिक्षण भी मिलता है और बागवानी विभाग खुद ही ये सारी चीज़ें देता है। केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रशिक्षण देते हैं, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करा देते हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी मिल जाती है इन कामों के लिए।
1: और डॉक्टर साहब, वर्षा का पानी जल संरक्षण करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे कदम उठाते हैं सरकार, तो उसके लिए भी किसान भाई बहन कुछ उपाय अपना सकते
0: जी
1: हैं?
0: बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी योजनाएं हैं,
1: हाँ
0: फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, एनी कट बनाने के लिए, और ड्रिप वगैरह पर भी काफ़ी अच्छी सब्सिडी है, और आप पॉली हाउस वगैरह भी लगाते हैं उनके लिए भी 70-80% तक भी सब्सिडी मिलती है किसानों को, प्रशिक्षण मिलता है। और अभी तो मैंने देखा कई छोटे किसान भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने ये पॉली हाउस वगैरह लगाए। खीरा की खेती, वो हर दूसरे दिन आप तोड़ लो और आसपास के आप मार्केट में बेच सकते हैं, उससे अच्छी कमाई होती है कम जगह से, और विपरीत परिस्थितियों से भी वो निपट लेता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है।
1: तो
0: तो
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल कि जैसे बागवानी लगा रहे हैं हमारे किसान भाई, तो जो नीचे की जो जमीन है बहुत सारी खाली पड़ जाती है जब पौधे बड़े हो जाते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो क्या उस जमीन में भी कुछ फसल उगा सकते
0: कम
1: हैं?
0: से कम पहले 3-4 साल तो काफी स्पेस होता है, अनार भी लगाते हैं तो 5-5 मीटर की दूरी पर
1: हाँ
0: लगा रहे हैं, कोई 6 मीटर की दूरी पर लग रहा है पौधा,
1: जी
0: उसमें लाइन के लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखते हैं, आराम से आपके कृषि के यंत्र जो भी हैं, ट्रैक्टर हैं, हल है, कुछ भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं। तो उनमें एक तो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और जो शुष्क क्षेत्र हैं इनमें गर्मी के टाइम में जो रेनी सीजन होता है उसमें ये उगाते हैं मूंग, मोठ,
1: दालें
0: दलहनी
1: सब्जियां
0: फसलें,
1: दलें।
0: तो इनसे क्या होता है किसानों को अतिरिक्त उपज भी मिलती है, आय भी होती है और उपजाऊ क्षमता उस जमीन की बढ़ती है, पौधों का भी रखरखाव ठीक रहता है क्योंकि इससे फलों को या उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। पानी है किसान के पास अच्छा मीठा पानी, तो वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं उसमें, और 4-5 साल में जब पौधे खूब बड़े हो जाएं तो उनका ही अच्छे से रख रखाव करें, क्यों बेर जैसे बागान अगर हम लगा रहे हैं हर गर्मी में उसमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग बहुत जरूरी है अगर आप आलस कर गए। बेर में क्या होता है जब टहनी मान लो कोई बड़ी हुई है उसका 70-75% भाग काट देंगे तो वहां से कई टहनियां निकलती हैं, और बेर में हमेशा नई जो टहनी निकलती है उसी पर फल लगते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मी में मई के महीने में प्रूनिंग, और शुरू के दिनों में जो भी फलदार पौधे लगाएं उनमें कटाई छटाई जो साइडों से निकलते हैं उनको हटाना होगा, कई बार वो नीचे रूट स्टॉक में से निकल जाता है जंगली, ध्यान नहीं दिया तो आपका ग्राफ्टेड मर जाएगा और वो जंगली पनप जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जो आपने शब्द कहा ग्राफ्टेड या ग्राउटिंग जिसको कहते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: ये सबसे महत्वपूर्ण है
1: जी
0: क्योंकि जो वानस्पतिक विधि से तैयार करते हैं हम पौधे जिसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, और जो भी पौधे सरकारी संस्थान प्रोवाइड करते हैं वो ग्राफ्टिंग विधि से, इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपको अच्छी गुणवत्ता जो हुबहू आ जाएगी जिस पौधे से भी आप ग्राफ्टिंग करेंगे, और दूसरा आपको फलत जल्दी मिलने लगेगी। एक बीज से कोई पौधा आप तैयार करेंगे वो मान लो 6-7 साल बाद फल देगा, आपका ग्राफ्टेड पौधा नेक्स्ट ईयर से ही उसमें फल मिलने लग जाएगा भले ही उत्पादन कम हो। फलदार
1: तो
0: पौधों में हमेशा वेजिटेटिवली जो प्रोपोगेट करते हैं ग्राफ्टिंग बडिंग से वही पौधे लें, क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश की गई किस्में लें, विश्वसनीय जगह से लें, चाहे बागवानी विभाग से लें या हमारे संस्थानों से लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने जैसे राजस्थान की बात की, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, लू भी बहुत चढ़ती है, तो ऐसे सूखे क्षेत्रों में अपनी बागवानी या पेड़ पौधों को बचा

0: के लिए या कीट और बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए?
1: जैसे एक तो पौधा हम नए नए लगाते हैं, बहुत जरूरी होता है,
0: हाँ जी,
1: सरकंडे के रेस के वो लगा देते हैं, जिधर से हवा का ज्यादा मूवमेंट रहता है ना, उसको पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे सीधे जो नई नई कोपल है पौधा बढ़ रहा है उस पर नहीं पड़े, तो ऐसे गर्मी में प्रोटेक्ट करते हैं। लोकली जो चीज होती है उसके लिए कोई विशेष चीज नहीं लाते। और दूसरा पानी, गर्मी के टाइम में जब लू के थपेड़े चलते हैं, नमी बनी रहे पौधे के हाले में, तो उससे उसको काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और दीमक का विशेषकर गर्मी में ही उसका भी प्रकोप होता है, तो उस टाइम बीच में चेक करते रहें, दीमक की दवाई भी लगाते रहें। एक बार जड़ें अच्छे से जम जाती हैं पौधे की, फिर तो वो भी लड़ने की क्षमता रखता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है उनसे।
0: तो डॉक्टर साहब, अंत में जो किसान शुष्क क्षेत्र में बागवानी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश होगा?
1: मेरा यही संदेश होगा किसान भाई, क्योंकि हमारे शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों के पास जमीन भी खूब होती है, वो परंपरागत खेती से हटके मूंग मोठ बाजरी तो सीजन में बोते ही हैं, बाद में खाली पड़े रहते हैं खेत, तो कुछ ना कुछ भूभाग पर वो फलदार या सब्जियों की खेती करें और उन्नत किस्म के पौधे लगाएं। फलदार पौधों 20-30-25 साल तक चलते हैं, और बीच में शुरुआती दिनों में साग सब्जी दूसरी फसलें आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है, संस्थान कई सारे सरकार ने खोले हुए हैं शुष्क क्षेत्रों में, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह आसपास संस्थान हैं। और राज्यों के जो बागवानी विभाग हैं, ढेर सारी स्कीम बागवानी विभाग चलाते हैं, केंद्र सरकार की मदद से भी और अपने खर्चे पर भी, वो प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, कृषि सहायता भी देते हैं। एक और टोल फ्री हेल्पलाइन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खोल रखी है, टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551। तो ये सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक साल के 365 दिन मुफ्त सेवा है किसानों के लिए। देश की 22 प्रमुख भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है, जिस क्षेत्र से भी किसान करेंगे उनको उन्हीं की भाषा में हमारे फार्म टेली एडवाइजर वहां पर होते हैं, वो जवाब देंगे।
0: किसान भाई बहनों, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर वाईआर मीना आज उन्होंने हमें विस्तार से बताएं, और हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे और सूखे वाले क्षेत्रों में अच्छी बागवानी की संभावनाएं भी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं, किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वाई आर मीना, और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा
3: और नीलम बहन। अब अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत, कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: बहन भाइयों, आप पुष्पा गोसाई से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं मौसम का हाल। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने की संभावना है।
0: और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: और अब नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाइयों को इंतजार होगा मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य अच्छे से संपन्न कर पाए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के कृषि भौतिकी संभाग की वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टानिया थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं।
0: और गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें और अगले दिन आप बुआई कर सकते हैं।
1: इस समय किसान भाई गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा रुधिरा, बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। बुवाई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और खेत में देसी खाद पोटाश और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।
0: और सरसों की अगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28 और पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें, खेतों की तैयारी करें। और किसान बहन भाइयों, इस समय मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें।
1: और इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस मौसम में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होता है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं आजादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सब्जी का भाव।
0: आलू बिका 12 रुपए प्रति किलोग्राम और प्याज बिका 34 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 24 रुपए प्रति किलोग्राम और बैंगन बिका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, खीरा बिका 25 रुपए प्रति किलोग्राम, भिंडी 20 रुपए प्रति किलोग्राम और गोभी बिकी 40 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: और अब बात करें फलों के भाव की, तो केला बिका 19 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब 80 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 60 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता 30 रुपये प्रति किलोग्राम और तरबूज 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना फल सब्जी का थोक भाव। और अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप

को आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। आप सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:35 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गजल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल का कार्यक्रम, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने को 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल राजघाट और विजय घाट पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
4: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
4: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस

0: संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यमुना के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेकर इस जन अभियान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाले का पानी बिना सफाई के यमुना नदी में नहीं गिरेगा।
2: सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम है, नालों को टैप करने का काम है, नए सीवेज प्लांट खड़े करने का काम है, डीसिल्टिंग करने का काम है, सीवर लाइन जोड़ने का काम है, ताकि एक भी ड्रेन या एक भी नाला यमुना में बिना ट्रीट किए ना गिरे। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो हम सब मिलकर के जब यमुना के प्रहरी बनेंगे तो निश्चित रूप में माँ यमुना साफ होना शुरू होगी।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमामि गंगे जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद यमुना की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
3: बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी है। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें स्मार्ट मीटर और पानी की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 328 MGD होगी। इस परियोजना पर 7,373 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा वजीराबाद जल आपूर्ति परियोजना और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। निर्धारित शर्तों के तहत अलग अलग पानी के कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: केंद्र ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख विभागों के लिए 5 साल की पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली सरकार के विभागों से 5 साल के लिए पूंजीगत व्यय और निवेश का ब्यौरा देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आईटी पार्क में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की रियल टाइम निगरानी, AI आधारित विश्लेषण, शिकायतों और फील्ड निरीक्षण से जुड़ी जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करेगा।
5: इस केंद्र का उद्देश्य केवल प्रदूषण संबंधी आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि तकनीक से प्राप्त जानकारी को जल्द से जल्द परिणामों में बदलना है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से प्राप्त रियल टाइम जानकारी को फील्ड स्तर की कार्रवाई से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, डेटा और फील्ड प्रवर्तन को एक

0: साथ जोड़कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदूषण हॉटस्पॉट, नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और संबंधित विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचाकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
1: इस छोटे समय में इतना शानदार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ बनाए, 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन साइटों को भी यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, जो AI ड्रिवन कैमराज के माध्यम से यहाँ देखी जा रही है। यहाँ हमारा मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनरी है उसको भी यहाँ से GPS के माध्यम से मॉनिटर हो सकती है।
0: इस वर्ष सर्दियों के दौरान 78 सब डिवीजन स्तर की टीमें इस केंद्र के माध्यम से निगरानी करेंगी। इसके अलावा वायुदूत टीमों के माध्यम से प्रदूषणकारी गतिविधियां की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। शिशु और निशा के साथ सौम्या शरण, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता और कचरा निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में भाग ले रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
3: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
2: इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कमला नेहरू रिज और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दिल्लीवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया तथा स्वच्छ तथा सुंदर दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर स्थित पुष्पांजलि स्कूल में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।
4: आज पूरी दिल्ली में लगभग 300 जगह पर इस प्रकार का सफाई अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली का एक लक्ष्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है।
2: दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज रामलीला के आगामी आयोजनों की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में आयोजन स्थलों, आवश्यक सुविधाओं और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर कल राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाय पॉइंट और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निषाद राजमार्ग, राजा राम कोहली मार्ग, BS Z मार्ग पर ITO चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर, आसिफ अली रोड, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर कल राजधानी में पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड वितरण केंद्र बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख समुदाय को गुरु अंगद देव के गुरु गद्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु अंगद देव की शिक्षाएं सभी को विनम्रता, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आइए सुनते हैं मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। जी हाँ, और कार्यक्रम चूँकि गीत मालिका है, यानी कि ऐसा माला जिसमें गीतों भरी बातें हों, गीत हो, और वो गीत जो आपके दिल को छू जाए। जी हाँ, उन्हीं गीतों का सफ़र अब शुरू करते हैं। और एक वक्त था जब गीतों का सफ़र, और या कहें तो गीतों का ऐसा लड़ी उस वक्त बनकर आया था जब हम लोगों ने उन गीतों को लेकर कई सारी ऐसी बातें कही थी कि ये वो ज़माना है, ये वो दौर है जब गीत बहुत ही खूबसूरत बनते थे। जी हाँ, उसी दौर की बात कर रहे हैं, वही तो है 90s का दौर।

जी हाँ, ये वो दौर जिस वक्त के सारे गीत हिट होते थे, और तो और उस वक्त रोमांटिक जो गीत हैं उनका सिलसिला कुछ ज़्यादा ही चला था, और उन गीतों को भूलना आज भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सारे गीत जो है वो सुपर डुपर हिट रहे थे। और फिर जब उस दौर की बात करें तो वो खूबसूरती और प्यार मोहब्बत से भरे गीत, उनमें से ज़्यादातर गीत तारीफों वाली होती थी, और तारीफ सुनना किसी नहीं भाता। वो ज़माना ही कुछ ऐसा था, कुछ ख़ास था। जिस वक्त वो दौर चल गया जब गीतों में मोहब्बत, तारीफ और उसका लहजा, उसकी धुन एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। और जब तारीफ की बात चल रही है तो तारीफ सुनना, कहते हैं ना, सबको भाता है। तो उस वक्त जब ऐसे गीत आए, वो सारे गीत हिट हुए थे। उनमें से एक गीत ये भी है, लेकिन उसके लिए दो शब्द ये ज़रूर कहेंगे कि तुम्हारी सादगी भी कयामत धाती है, ये खूबसूरती दिल को चुरा ले जाती है। तारीफ करूं क्या मैं तुम्हारे लिए, हर वक्त ये नज़र तुम्हें ही देखती रहना चाहती है।

सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ और गीत 90s के, जहां पर तारीफ तो बहुत ज्यादा है और तारीफ सुनना तो हमें भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब तारीफ की बात होती है तब कहते हैं ना कि इंसान खुद सामने से तारीफ करता है और हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप तारीफ सुनने के लिए बेकल रहते हैं यानी बेताब हो जाते हैं और आप खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी तारीफ तो करो। और जब इन्हीं बातों को लेकर गानों में उतारा जाए तो वो गीत कैसा बनेगा, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं में से एक गीत, 90s के ही है, आपको मजा आएगा, जरूर सुनिए।

तारीफ़ वही करते हैं और उसकी ही करते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वालों की तारीफ़ तभी होती है जब दिल

और नजर दोनों ही उसका हो जाता है। जी हाँ, वो नज़र तो सिर्फ वही चाहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको ही देखते रहें। और यकीन मानिए, जब ये पहली नज़र का मोहब्बत होता है, वहाँ पर मोहब्बत कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि आंखें मिली और कोई दिल में उतर गया। जी हाँ, और तब जो तारीफ होती है वो दिल से होती है।

ये वही तो मोहब्बत है जो पहली नज़र का होता है। कहते हैं ना, मोहब्बत में जुबां से ज़्यादा नज़रें काम करती है। जब से हमने तुमको एक नज़र देखा है, दिल जिगर पर अजीब सा असर देखा है। आंखों ही आंखों में चुरा लिया दिल मेरा, लगा जैसे जिंदगी का हर लम्हा थम गया है।

और जब चाहत की बात होती है तो बात आती है कि ये चाहत तो नज़रों का ही खेल है। जी हाँ, नज़रों से जब मोहब्बत हुआ तो फिर चाहत अपने आप बढ़ गया। और अगर फिर क्या, जब नज़रों से ही मोहब्बत हुआ और चेहरा ढका हो, घूंघट की आड़ में हो, तब क्या होता है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, घूंघट की ओट से जब तेरा दीदार हुआ, बिना बात किए ही हमें तुमसे प्यार हुआ। ये पर्दा भी तो तेरी खूबसूरती छुपा न सका, हर नज़र में बस तुझ पर एतबार हुआ।

कहते हैं कि तारीफ आप चाहे लाख कर लें, लेकिन अगर आपने तारीफ में अपनी महबूबा की तुलना चांद से नहीं किया, तो फिर क्या बात, तब तो फिर तारीफ अधूरा ही माना जाता है। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि गीतों में तुलना होती है तो चांद से, और फिर जब गीतों में इन शब्दों को डाला जाए तो गीत खूबसूरत तो होना ही है। 90s के गीत सुन रहे हैं और कार्यक्रम है गीत मालिका, मैं हूँ पूजा भारती। गीत मालिका फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत चांद से तुलना कर ही दी गई है, आइए सुनते हैं उस गीत को।

नफरत सुबह इंसाफ है, चांद के मुंह पर है छाई, तेरा मुखरा तो साफ है। वाकई में तुलना अगर चांद से भी करते हैं तो चांद में भी तो दाग है। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, वक्त अब खत्म हो चुका है। मुझे पूजा भारती को दीजिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत मालिका से अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार, समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
3: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

0: जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
2: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
4: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
5: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
4: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा

0: की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
3: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
4: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
5: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
3: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने दो रजत और

0: कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessmen over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Machar as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Machar for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Prime Minister Modi said Captain Smith is a hero and India is proud of him.
2: Bharat ke Captain Smith ne जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: Prime Minister Modi also spoke

0: Ashwani in 2019, Prime Minister Narendra Modi had said that the memorial symbolizes the spirit of valor of the country's brave soldiers.
1: Delhi ke dil, yani wo jagah jahan par India Gate aur Amar Jawan Jyoti maujood hai, bas uske theek nazdeek mein ye ek naya smarak banaya gaya hai. Rashtriya Sainik Smarak swatantrata ke baad sarvochcha balidan dene wale जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है. राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे. यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके.
0: Talking to Akashvani News, a student from Delhi University, Tufail, shared that his experience at the National War Memorial has been incredible.
2: My experience at National War Memorial has been such a fantastic experience. The entire idea of depicting the names of all martyrs of this nation, all the soldiers who sacrificed their life for this nation, it's such a great idea. It is a reminder of constant sacrifices that we have to make in order to protect our nation from our enemies. And at the same time, it's also surrounded with flora and fauna, and it's such a huge place, and I would suggest everybody should visit this place once.
0: The Prime Minister also dedicated to the country the National Police Memorial in 2018 on the occasion of Police Commemoration Day. More than monuments, these establishments pay tribute to the men and women in uniform who guard the country, combat terrorism and crime, maintain law and order, and rush to aid during disasters and emergencies. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
3: The United States has imposed sanctions on 10 individuals and entities across several countries for allegedly helping procure weapons and military components for Iran's Ministry of Defense and Armed Forces logistics. In a report, the media line says that among those sanctioned is a Pakistani businessman, along with three companies linked to the person. Moreover, the businessman is chairman of the Pakistan-based Cavalier Group, a private defense company with operations in Pakistan and other countries. Bihar continues to battle floods. Several rivers in the state are flowing above the danger mark. More from our correspondent.
4: Chief Minister Samrat Chaudhary has sought the assistance of the Indian Air Force for relief and rescue operations in view of the seriousness of the situation. After inspecting the rising water level of the Ganga in Patna today, Mr. Chaudhary told reporters that the next 48 hours will be extremely crucial for Bihar. Amid the rising water level of the Gandak, breaches in embankments at several places have led to the rapid spread of flood water in low-lying areas. Saran, Gopalganj, East Champaran, West Champaran and Vaisali are among the worst affected districts. The rising water levels of the Bagmati and Kosi have also inundated several villages in Darbhanga, Samastipur, Supaul and Saharsa districts. Ashish Ranjan for Akashvani News, Patna.
3: India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, entire Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 48 hours. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over southern states, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of Northeast tomorrow. On to sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj today bagged silver medal in men's 97kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Indian pair of Manu Francis and Princess Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. It is India's first sailing medal of the Asian Games. The team of Harshita Tomar and Sheetal Verma won the bronze medal in the women's skiff sailing event. Ganesh Mani Ratnam Tirumuru got bronze in the individual compound archery. India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with chief ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessman over Iran military procurement. And in Asian Games, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुकुमरानी के नज़रियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाज़े के हल के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत आज 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुकुमरानी के नज़रियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले इदारों को भी मुल्क की जरूरी असलाहत पर काम करना चाहिए। आज नई दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं।
6: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
5: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि महज कुछ महीनों की ताखीर नौजवानों के लिए मुश्किलात की वजह बन सकती है और इसीलिए इम्तिहानी निज़ाम को मुकर्रर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वज़ीर दाखला अमित शाह ने देरीना महानदी आबी तनाज़े को हल करने के लिए आज नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वज़राए आला और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर कल मुल्क भर में खसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा जहां कलीदी देही हुकुमरानी असलाहत पर बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान पंचायतों को तकवीत देने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और देही भारत में मजमू मयार जिंदगी को बुलंद करने पर मरकूज बदलाव लाने वाली हुकुमरानी को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि इन खसूसी ग्राम सभाओं के जरिए अवाम की मनसूबाबंदी मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतें शमूलियाती और शवाहित पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे तनाजे और जंग की सूरत हाल के तनाजुर में मजीद अहमियत का हामिल हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हयात और नजरियात का आलमी बिरादरी में बहुत एहतराम किया जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की जानेब पेशरफ्त कर रहा है, जिसमें हमदर्दी और शमूलियत को तरजीह दी जा रही है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शहरी तरक्की के फवायद से महरूम ना रह जाए। सदर

0: मौर्य ने कहा कि नजरिया महात्मा गांधी के सर्वोदय के जज्बे की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े हादसे को टालने और बेशकीमती जिंदगियों को बचाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ की है। इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हादसे को टालने पर कप्तान स्मिथ मच्छार को हीरो करार दिया। जनाब नतन्याहू ने तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवास पर सवार 174 लोगों की जिंदगियां बचाने पर कप्तान स्मिथ मच्छार का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ को हीरो करार दिया है और कहा है कि भारत को उन पर फख्र है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: वजीर आजम जनाब मोदी ने कप्तान स्मिथ के वालदेन और उनकी अहलिया से भी बात की। कॉकपिट हमले में 174 मुसाफिरों की जान बचाने के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हुए फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए गुजरात के सभी अहम मजहबी मकामात पर खसूसी दुआ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के रहने वाले बहादुर कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी के लिए सोमनाथ और अंबाजी के पवित्र मंदिरों में वैदिक मंदिरों के साथ खसूसी पूजा जारी है। कप्तान के लिए मुल्की दुआओं में शामिल होते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कप्तान मचार की गैर मामूली शुजात की तारीफ की और उनकी दिलेराना कोशिशों के एतराफ में उनके लिए बावकार विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड का ऐलान किया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुबई तिल अभी परवास जारी रखने और जिंदगियां बचाने पर फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो करार दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब फडणवीस ने कहा कि मच्छार ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का सबूत देते हुए मुश्किल सूरत हाल को संभाला। जनाब फडणवीस ने उनकी जल्द सेहतयाबी और बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्लाई दुबई की परवाज FZ 1073 के कॉकपिट में मच्छार पर उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये परवाज कल दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई तैयारे के अगवा की कोशिश अमरीका में हुए 9/11 हमलों से मुमासिल दिखाई देती है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार कल ओमानी पायलट के हमले और तैयारे के निजाम को तबाह करने की कोशिश के बावजूद कॉकपिट कंट्रोल संभाले रहे। जनाब मेंसर ने कहा कि सऊदी हुकाम ओमानी पायलट से पूछताछ कर रहे हैं और उसे मुत्तहिदा अरब अमारात भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई की जांच और इसके बाद के मुमकिन हमलों से बचने को यकीनी बनाने के लिए इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने माजूर अफराद दिव्यांगजन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स की मियाद को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर माजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांगजन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुलअमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांगजन के फास्टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग्स 4 साल तक काबिले अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नजरसानी शुदा जाब्तों का मकसद कौमी शाहराहों के टोल वसूली के निजाम को अहल दिव्यांगजन और माजूर मुस्तफिदीन के लिए ज्यादा काबिल रसाई, शफाफ और सारिफ दोस्त बनाना है। ان ہدایات کے مطابق جسمانی معذوری والے افراد کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑیوں اور دیویانگ جن کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے مستثنا فاسٹ ٹیگز جاری کیا جائے گا. اس کی میعاد معذوری کے تناسب کی بنیاد پر طے ہوگی. جو معذوری سے متعلق سرٹیفکیٹ، معذوری کا منفرد شناخت کارڈ UDID اور دیگر متعلقہ دستاویزات میں درج ہوگا. یہ ضابطے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹول ٹیکس سے استثنا مقررہ قواعد

0: और जाब्तों नीज अहलियत की शरायत के मुताबिक जारी रहे। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: बिहार मुसलसल सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
0: सैलाब की सूरतहाल की संगीनी के पेश नज़र वज़ीरे आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव की कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाफ की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपने खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं फौजी जंगी यादगार और फौजी पुलिस यादगार जैसी इमारतों के क्याम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: कौमी जंगी यादगार का क़याम जनवरी 2019 में हुआ था। इंडिया गेट के करीब तामीर की गई यह यादगारी इमारत मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले भारतीय मुसल्ला अफवाज के नौजवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वक्फ है। मरकजी यादगारी इमारत के अलावा यहां उन 21 बहादुर फौजियों के मुजस्मों के लिए भी मखसूस मकाम है, जिन्हें फौजी खिदमात के लिए मुल्क के सबसे आला तरीन एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इस मेमोरियल का डिज़ाइन फर्ज की अदायगी के दौरान फौजियों की कुर्बानी की अक्कासी करता है। 2019 में आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेमोरियल मुल्क के बहादुर फौजियों के जज्बे शुजात की अलामत है। रिया मंडल और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: सरकार ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। वजारत तालीम का कहना है कि दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी से अहल तलबा को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर दरख्वास्त मुकम्मल करने के लिए इजाफी वक्त मिलेगा और मुतल्लिका अथॉरिटी की जानिब से बरवक्त तस्दीक करने में भी सहूलत हासिल होगी। अमरीका ने ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ला अफवाज लॉजिस्टिक्स के लिए हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने में मुबैना मदद करने की पादाश में कई ममालिक के 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। द मीडिया लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी आयद किए गए अफराद में एक पाकिस्तानी कारोबारी समेत उससे मुंसलिक 3 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा मस्कूरा कारोबारी पाकिस्तान में कायम केविलियर ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक प्राइवेट दिफाई कंपनी है जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सरगर्म अमल है। इसके साथ ही अमरीकी हुकाम ने इल्जाम लगाया है कि यह कारोबारी कंपनी ईरान की वजारत दिफा के लिए बिचौलियों के तौर पर काम कर रहे थे और हथियारों के खरीद और तकसीम में मदद कर रही थे। इसके अलावा सऊदी अरब में कायम केविलियर डायनामिक्स फॉर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई सऊदी हुकाम के तावुन से अंजाम दी गई। अमरीकी वजीर खजाना बेसेंट ने कहा कि अमरीका इक्तसादी बायकॉट की कार्रवाई के तहत ईरान को मदद फराहम करने वाले अफराद और कंपनियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। यह मुहिम ईरानी हुकूमत के इक्तसादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अगस्त में शुरू की गई थी। और जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने 2 चांदी और 3 कांसे के तमगों समेत 5 तमगे हासिल किए। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश सिवाच ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में जापान के पहलवान यूरी निकाजातो से 0-4 से हारने के बाद चांदी का तमगा हासिल किया। इससे पहले सुबह में भारत के कश्तीराम मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने मर्दों के कश्तीराम मुकाबले में पहला चांदी का तमगा जीता। तीरंदाजी के मर्दों के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांसे का तमगा जीता, जबकि स्क्वाश में भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमों ने कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों की हॉकी में भारत अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है और दूसरी तरफ खातीन की हॉकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। तमगों की फहरिस्त में भारत 10 सोने, 23 चांदी और 32 कांसे के तमगों समेत कुल 65 तमगे अपने नाम कर चुका है। اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ

21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुकुमरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेश कदमी कर रहा है। वजीर आजम ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है और बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

पे जलवागर बुरका पुराना ओढ़ लिया उस पे जल्दी तर मिलकर अली से हो गई डोली में वो सवार पहुंची यहूदियों के मकान पर बसद वकार अलकिस्सा एहतराम से लाया गया उन्हें एक तख्त सीमो जर पे बिठाया गया उन्हें फिर इल्तिजा की सबने के बुरका उतारिए बीबी संभल के बैठिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र कैपेक्स निवेश आशय कैपेक्स 2026 पर भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वेक्षण विशाल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित और क्रियान्वित पूंजी पर व्यय पर व्यापक और समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता को बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, उदयपुर और नालिया में वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examination must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed commitment to rules-based multilateral trading system. Participating in the opening day of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal thanked the U.S. G20 presidency for placing food at the center of the discussions.

फिल्म महल से आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। जी हाँ, पुराने गीत, गोल्डन एरा फिल्म संगीत सुन रहे हैं हम, गीत सुनहरे। और गोल्डन एरा की बात हो रही है तो इस फिल्म को तो भूलना नामुमकिन है, उस वक्त का सबसे डराने वाला फिल्म। जी हाँ, लोग उस वक्त ऐसी फिल्में देखते नहीं थे, ये सोचते थे कि बच्चों के साथ नहीं देख सकते, परिवार के साथ नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म में इस काम को देखा, इस फिल्म के गाने को देख सुना, और उनमें जब फिल्मों का अलग सा रूप नज़र आया, तब जाकर ये गाना भी हिट हुआ और ये फिल्म भी हिट हुई। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो हिट हुए और वो गोल्डन एरा के गीत थे। और तो और, जब आप कहीं भी जाएं, कोई गीत गुनगुनाने को कहे, तो याद रखिए सबसे पहले याद तो आता है गोल्डन एरा के फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

फिल्म के इस गीत को सुरैया और श्याम की आवाज़ों ने सजाया। गीत इतना हिट हुआ कि आज भी हम उसे गुनगुनाते हैं। तो हिट गीतों का सफ़र चल रहा है एक तरीके से गोल्डन एरा फिल्म संगीत के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं वो फिल्म संगीत जो अपने ज़माने में इतना मशहूर हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि उसके हर गीत में एक खूबसूरती लोगों को नज़र आने लगी थी। और गीतों का सफ़र है चुकी है तो आपको ये बताते हैं कि गीत में जब श्याम की आवाज़ सुरैया के साथ दी गई तो वो गीत बहुत ही सफल रहा और लोग श्याम को और काम करने के लिए मनाने लग गए।

लता मंगेशकर किशोर ने इस गीत को और खूबसूरत बना दिया। कहते हैं गीतों में उस जमाने में जब लता मंगेशकर गीत के लिए आई तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लोगों की चुनौती और साथ में रिजेक्शन उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किलदायक था। फिर क्या था, एक समय ऐसा भी आया कि सारे डायरेक्टर इन लोगों ने सारे संगीतकार गीतकार सबकी एक टेस्ट नुमा लेने लग गए जिससे वो लोग

काफी प्रसन्न हुए। उसमें से कोई भी गीत ऐसा नहीं था जो हिट ना हो। इस फिल्म के सारे गीत हिट।

वाकई में एक से एक बढ़कर खूबसूरत गीत, आवाज भी अलग तो भी गीत खूबसूरत। जी हाँ, अलग अलग गीतों को खूबसूरत बनाने का श्रेय जाता है संगीतकार और गीतकार और जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद गाने के लय को, धुन को अपने जीवन में उतार रहे थे, वो सब इस गीत के लिए तारीफ के काबिल है। कहते हैं इंसानों ने अपना काम बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी के बाद करना शुरू किया, लेकिन जब गीत संगीत का दौर शुरू हुआ, तब लोगों ने मनोरंजन के साथ लगातार अनवरत काम करते चले गए। संगीत का जादू बिखेरता है उस 90s और 50s तक के दौर के बीच में। जब 50s में गीत शुरू हुआ, तब उस वक्त गीतों को इतने सुनने का प्रचलन नहीं था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज गीत और संगीत की दुनिया एक अलग ही और अनोखा ही रूप ले चुकी है।

इतना भी आया नहीं करते। और वाकई में गीतों के बोल तो देखिए, कह देते हैं ना सीधे ही कि सपनों में ना आया करो, लेकिन क्या खूबसूरत लाइन है, ख्यालों में किसी के भी इतना आके तड़पाया ना करते। गीतों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस गीत को गाया था गीता दत्त ने और मुकेश ने। आगे बढ़े तो गीतों का वो दौर जहाँ महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि एक समय था जब पुरुष साथी ही गीतों को खूबसूरत बनाते थे, लेकिन जैसे ही वो शुरुआत हुई महिला साथियों ने भी अपने कदम से कदम मिलाया और खूबसूरत गीत से हम लोगों को सराबोर कर दिया।

बहुत ही खूबसूरत संगीत, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी। और वाकई में गीतों के बोल इतने खूबसूरत, तभी तो गीत भी सुंदर बन गया। लेकिन गीत गाने में जो संयम, जो ठहराव चाहिए होता है, एक संगीतकार ही उसे अपने हुनर से सही गा सकता है। हर किसी में संगीत और गीत की लय एक साथ, उसका समावेश एक साथ देखने का जब मौका मिलता है तो सुनहरे गीत का ऐसा ही सफर बनता है। और इन्हीं गीतों में से आइए सुनते हैं एक और फूल।

या फिल्म संगीत का वो दौर हम लोग सुन रहे हैं जिस दौर में फिल्म संगीत सबसे आगे था, वो दौड़ जो रेस था उसमें ये गीत जो सुनहरे गीत थे, जी हाँ गोल्डन इरा के सुनहरे गीत सबसे आगे और सबसे तूफान से आगे बढ़ा, क्योंकि उन गीतों में म्यूजिक और आवाज़ स्वर उसके साथ साथ धुन उसके साथ साथ राग उसके साथ साथ लिरिक्स सब कुछ अपने चरम सीमा पर खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था। तो फिर जो भी दौड़ हो जो भी रेस हो गीत तो आगे बढ़ेंगे ही, और यही कारण है कि उस जमाने के गीतों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, आज भी उनके घरों में उसकी अलग जगह है।

जी हाँ, ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना, फिल्म सजा। और इस गीत के बाद अगला गीत भी उसी एरा का है, जिस एरा ने हम सबको एक खूबसूरत गीत सुनने का मौका दिया।

फिल्म संगीत ना जब हम सुनते हैं तब हमारा मन करता है कि वो गीत जो हमारे कान को और सुंदर बना देता है, उसमें रस घोल देता है, उन गीतों को अनवरत हम सुनते जाएं। लेकिन वक्त की पाबंदी हर जगह होती है और यहाँ भी है। वक्त अब ख़त्म होने को है, गीत सुनहरे का ये सफ़र यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार, और आपके लिए एक गीत जिसे जरूर सुनिएगा। नमस्कार।

0: मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हाय
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 है। 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगामी महीनों में वार्ता को अंतिम रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के मेदचल मलकाजगिरी जिले के बचुपल्ली स्थित एक निर्माण स्थल पर उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों के एक परिवार को लगभग 1 वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेदचल मलकाजगिरी के जिला मजिस्ट्रेट और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाए गए सभी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और उनके वर्तमान ठिकाने, उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1,000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को भारत जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। शुरुआती 2 मुकाबलों के बाद भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में अफगानिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। 3 बजने को है, आप सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में कांग्रेस केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज

राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना में घायल हुए कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने जानकारी दी। प्रसार भारती से विशेष बातचीत में राजदूत मित्तल ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कैप्टन मछार और उनके परिवार से मुलाकात की और पायलट मछार को अच्छी स्थिति में पाया। डॉ मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छी चिकित्सा मिल रही है और भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा की संभावना जताई है। केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अगली दो गजलें आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र साहब की आवाज में।
1: बिलाखिर भूपेंद्र, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थे और कंपोजर भी, गजल के इस सफर में शामिल हुए।
2: हमें

0: श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के इस के अंत में चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं थिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर समय होगा कार्यक्रम चिंतन का और 6:45 पर आप सुन सकते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 66। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का।

0: और 7:25 पर आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का गांधी समाधि राजघाट से सजीव प्रसारण। सुबह 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं और 8:45 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम गांधी चर्चा का। सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 10:10 पर समय होगा आपकी पसंद फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, आप समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। पांचवा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें लगभग 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कई मुख्य सत्र, समानांतर चर्चाएं और गोलमेज बैठकें होंगी। इन बैठकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और दीर्घकालिक निवेश के लिए घरेलू पूंजी जुटाने जैसे प्रमुख

0: medals. The men's hockey team defeated arch rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final to reach the final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. In wrestling, Nitish Swarch, who won in the men's 97-kilogram Greco-Roman category, he lost 0-4 to Japan's Yuri Nakazato in the final, securing India's first silver in Greco-Roman wrestling at the Asian Games since 1962. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी